0: और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं। उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रूपये होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the center has signed a historic tripartite memorandum of understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
3: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
4: वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
2: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources

0: SGSTI में सिलेक्शन हो रहा था
1: जी
0: हायर सेकेंडरी के मार्क्स पे, लेकिन तब कोई ऐसी पीईटी वगैरह या एनईईटी और ये सब
1: नहीं
0: नीट वीट
1: होता
0: नहीं
1: था।
0: होती थी,
1: जी,
0: तो उस समय मिल रहा था एडमिशन। बट हमारे माता पिता और दादा दादी, चूंकि मैं अकेली लड़की थी, तो वो और बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती थी,
1: अच्छा
0: तो भोपाल में था नियरेस्ट, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप यहीं रहो। और उस समय इंजीनियरिंग के लिए बहुत कम लड़कियां जाती थी, तो इसलिए इंजीनियरिंग ब्रांच भी ना ले पाई। फिर स्विच ओवर करा, तो फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट वन में गुजराती कॉलेज में एडमिशन लिया, बायोलॉजी में, और तब बायोलॉजी पढ़ी, और फिर एक साल पढ़ के और फिर पीएमटी के एग्जाम दी। और उसमें दो दो महीने का अंतर था उसमें रिजल्ट आने में, तो उस बीच में वापस से मैथ्स ज्वाइन कर लिया था कि अगर नहीं होता है तो फिर एमएससी करेंगे और पीएचडी करेंगे।
1: उस वक्त कोई ऐसी याद आती है आपको कि जब सब्जेक्ट आपका पसंद का था वो नहीं लिया और बायोलॉजी लेना पड़ा या चेंज होनी पड़ी ब्रांच, तो आपको ऐसा लगा कि मुझे वही करना था, ये क्यों कर रही हूं मैं? ऐसा कोई बालपन का वो कोई छोटा सा प्रसंग आपको जीवन का याद आता है कोई ऐसा?
0: ऐसा तो नहीं था, मुझे ऐसे बहुत ऐसा नहीं था कि मैं ये ही करूंगी, ये नहीं करा तो मैं कोई उसके लिए मुझे फ्रस्ट्रेशन हुआ या मुझे कुछ पछतावा हुआ, ऐसा कतई नहीं था। मुझे जब इसमें मुझे सजेस्ट किया गया मेरे माता पिता और मेरे दादा दादी वगैरह द्वारा कि हम चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, क्योंकि मेरे फादर श्री आनंद मोहन माथुर जो अब नहीं है, तो उन्होंने 3 महीने मेडिकल की पढ़ाई करी थी फर्स्ट पीएमटी देके।
1: जी
0: और मेरे फादर ग्रैंडफादर को 47 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स रिटायर कर गए थे कंपलसरी,
1: जी
0: तो उस वजह से वो 3 महीने बाद आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उनकी इच्छा थी। तो मुझे ऐसा कुछ अफसोस नहीं हुआ कि मैंने उसको क्यों नहीं परस्यू करा और क्यों मैंने
1: मेरा
0: मेडिकल लाइन चुनी।
1: फादर डॉक्टर नहीं बन पाए थे तो उनकी इच्छा थी कि उनकी बेटी जो है वो
0: जी
1: डॉक्टर जरूर
0: जी
1: बने, और
0: जी
1: उस लिए वो उन्होंने जी जान लगा दिया उसके
0: जी
1: लिए। उस समय जो है, एक तो घर में लड़की होना, अकेली होना,
0: जी
1: तो आपका लाड़ प्यार तो बहुत हुआ होगा,
0: जी
1: क्या याद आता है आपको? आपकी
0: लाड़ प्यार तो बहुत था
1: आंखों में आंसू आ गए?
0: जी, लेकिन कभी भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, हमेशा मुझे अच्छी बातें सिखाई। और मेरे दादाजी को पार्किंसोनिज्म था, तो उनकी सेवा करी, और ऐसा कहीं पे मुझे नहीं लगा कि मेरे अपब्रिंगिंग में या मुझे बड़ा करने में कहीं पे मुझे कोई कहीं पे भी दुख हुआ या किसी तरह की कमी रह गई।
1: पूनम जी, आपका एक बहुत बड़ा नाम है, और खास तौर पे जिस तरह से आप पेशेंट को डील करते हैं, जितना रिलैक्स करके उनको इजी कर देते हैं, उनको हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, उनकी डिजीज उनको भूल जाते हैं पेशेंट के, मुझे कुछ परेशानी भी है और सब ऐसे ही हो जाता है, तो क्या आपका जीवन भी ऐसा ही रहा कि बहुत लाइटर मूड में सारा सब कुछ ऐसे ही निकल गया, बिना संघर्ष किए ये हासिल किया आपने, या कोई संघर्ष की ऐसी कहानी आपके इसके पीछे छुपी हुई है?
0: ऐसी कोई कहानी तो नहीं छुपी, लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, मुझे हमेशा अच्छा व्यवहार करना और लोगों के प्रति सेवा भाव रखना, जो कि मेरे पिताजी भी करते थे, उन्होंने बहुत सेवा के कार्य किए, तो मुझे भी और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती थी कि जब भी आप किसी पेशेंट को का इलाज कर रहे हो तो ये कभी भी नाराज नहीं हो, और कभी भी उसको किसी अपने स्वार्थ की

0: पिछले 40 साल मैंने यहाँ पे नौकरी की है और मैं प्रोफेसर से रिटायर हुई हूँ। तो हमेशा स्टूडेंट्स को मैं यही सिखाती थी कि हमको मरीज की आधी तकलीफ हमारे अच्छे व्यवहार से और अच्छे बोलने से, उससे पूछने से, वो कुछ अगर बोलती है तो हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तकलीफ में आपके पास आई है और आपके पास उसका निदान चाहती है। तो अगर आपकी बोली अच्छी रहेगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा, तो मरीज का आधा दर्द तो वहीं ठीक हो जाता
1: मैडम, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है और आप मुस्कुराते हैं तो आधी तकलीफ तो पेशेंट की वहीं से खत्म हो जाती है। और आज आपकी मुस्कुराहट के साथ जो आपके आंसू देख रहे हैं तो हमें वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अतीत की वो याद जो आपके आंखों के सामने आ रही है, तो ये भी ये मान के चले कि ये शायद खुशी के ही आंसू हैं आपके।
0: जी
1: अच्छा, पिताजी आपके जो थे बहुत जानी मानी हस्ती हैं और पूरा इंदौर शहर उनको जानता है, बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लिया जाता है, आनंद मोहन माथुर जी का। तो डिसिप्लिन तो उनका बड़ा तगड़ा होगा,
0: जी
1: तो ऐसे में डिसिप्लिन और लाड़ प्यार दोनों में मैनेज हुआ, तो कभी आपने उनके प्यार में ऐसा देखा कि बहुत सख्ती रही हो?
0: हाँ, मुझे कई बार डांट पड़ती थी। कभी भी मैं लेट हो जाती थी
1: हाँ
0: तो मुझे बहुत डांटते थे, क्योंकि वो टाइम के बहुत पंक्चुअल थे।
1: जी
0: और मैं कभी भी कहीं जाना हो या उनके पास ही जाना हो और मैं लेट हो जाऊं, या किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, टाइम दिया है और नहीं गई, तो मुझे बहुत डांट पड़ती थी। और मेरी मुझे इस बात का उनका मैं उनको एडमायर करती हूँ कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, और उनका डिसिप्लिन, उनकी पंक्चुअलिटी, उनकी नॉलेज सब बहुत ही अच्छी थी।
1: बहुत करीब रही हैं आप उनके
0: जी
1: अंतिम समय तक, और मुझे याद है कि जो माथुर साहब जी हैं, आपके पिताश्री हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव तक क्रिएटिव रहे हैं।
0: जी
1: उन्होंने बहुत उम्र के एक ऐसे दौर में संगीत सीखना भी प्रारंभ किया था, तो वो चुप बैठने वाले व्यक्तियों में से नहीं थे, तो वो एक हौसला देता है व्यक्ति को
0: वो एक
1: कि
0: अनाउंसर भी थे आकाशवाणी में
1: अच्छा।
0: पहले, तो इस
1: अरे
0: तो इस तरह से मैं
1: वाह,
0: आकाशवाणी से भी जुड़ी
1: जुड़ी
0: हुई
1: हुई।
0: हूँ।
1: जी जी जी
0: जी
1: माँ का व्यवहार और पिता के व्यवहार में क्या अंतर लगा आपको, कि माँ कैसे आपको प्रोटेक्ट करती थी, आपको आगे बढ़ाती थी?
0: माँ भी सेंट्रीफ्यूज में उन्होंने 37 साल एज हिंदी टीचर पढ़ाया, और उनकी गुरु महादेवी वर्मा थी।
1: अरे वाह
0: उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MA/LT करा था,
1: जी,
0: और यहाँ पे हिंदी की टीचर थी, ड्रामे भी कराती थी। तो उस तरह से जो ये कला की जो विरासत मिली है मुझे, वो बहुत ही अनमोल है।
1: एक बड़ी विचित्र बात होती है कि एक इंजीनियर और एक डॉक्टर, जिसे कहते हैं टेक्निकल फील्ड है या साइंस वाला फील्ड है, उसके बाद अगर डॉक्टर या इंजीनियर को कला में भी महारत हासिल करते हुए देखते हैं या उसमें इंटरेस्ट लेते हुए देखते हैं, तो समझ में नहीं आता कि ये कलाकार जो है, मतलब कला के प्रति इतना रुझान कैसे, और फिर साइंस के प्रति उसमें अपना पेशा कैसे चुना। मैंने आपको भी देखा है कि आप संगीत और बाकी चीजों के प्रति बड़ा आपका आकर्षण है, कहीं ना कहीं आपकी वीडियोज या बाकी चीज उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो साइंस के स्टूडेंट और फिर कला पक्ष को मजबूत रखना, ये कैसे?
0: संजीव जी, मैं समझती हूँ कि अगर आपकी कुछ भी हॉबीज होती हैं, जो कला हो, चाहे वो उसमें म्यूजिक हो या डांस हो या आपकी पाक कला हो या गार्डनिंग हो, हर चीज़ आपका स्ट्रेस बस्टर होती है। मतलब आपकी अगर कोई भी तनाव होता है, वो उस चीज़ को अगर आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो कुछ करना, तो सिर्फ एक आपका प्रोफेशन ही नहीं, हालांकि प्रोफेशन में भी हम उतना ही एंजॉय करते हैं, किसी का दुख दर्द दूर करना। और हम लोग तो जैसे ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो एक किसी भी माँ को एक बच्चे की सौगात देना और उसके चेहरे पे खुशी देखना, उससे हमारा सारा दुख दर्द और हमारी थकान वो दूर हो जाती है।
1: बहुत टफ काम है गायनोकोलॉजिस्ट का,
0: जी
1: रात बेरात किसी भी वक्त जो है समय नहीं देखते और आपको कॉल आ जाएगा, आपको दौड़ना पड़ेगा।
0: जी जी ये बात तो
1: तो
0: है।
1: ये जो इतनी तकलीफदायक जीवन रहा, उसमें पारिवारिक क्लेश कभी नहीं आया कि चाहे जब आप उठ के जा रहे हो रात को बेरात, या ये इधर दौड़ रहे हो कभी इधर से कॉल आ गया, और जब आप एक सक्सेस पा लेते हैं हर व्यक्ति

0: चाहता है कि यही डॉक्टर हमारे साथ हो, तो हर व्यक्ति को समय देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: नहीं, इसका श्रेय मैं मेरे पति को दूंगी, डॉक्टर राजकुमार माथुर, जो कि प्रोफेसर एंड हेड थे सर्जरी के, अब रिटायर हो चुके हैं, डीन भी रहे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के और अभी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्होंने, चूंकि हम लोग दोनों मेडिकल फील्ड के थे तो एक दूसरे को समझते हैं, और कभी भी जाना पड़े तो कभी भी हम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं गई तो, या मुझे अगर किसी डिलीवरी के लिए या किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर जाना हो तो मुझे कोई तकलीफ हुई, मुझे हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है और हमेशा साथ दिया है।
0: अच्छा, अगर हम स्कूल की याद ताज़ा करें मैडम, हायर सेकेंडरी के पहले की, अगर 9th, 10th, 11th की या 8th की, कोई ऐसी सहेली जो बहुत आपके खास होती थी या आपके पास बैठ, जिससे आपकी बहुत पड़ती थी, और क्या आज भी वो आपके साथ है, या उसको आप याद करते हैं, या अब उससे मुलाकात नहीं है, या वो कहीं और चली गई, ऐसी कोई याददाश्त?
1: हम लोगों का ग्रुप हुआ करता था,
0: अच्छा,
1: 8-10 लड़कियों का, और हम लोग साथ में खाना खाना, कोई भी एक्टिविटीज करना, लंच ब्रेक में या कहीं पे आना जाना, तो वो हम लोगों का रहता था, तो उसमें हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। पर हाँ, वहाँ पे स्कूल में भी हम लोगों को डांस में, मैंने संगीत कथक नृत्य में 4th क्लास पास की है।
0: कथक में? कहाँ से?
1: ये प्रयाग यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से। तो उसमें फिर मैंने,
0: बड़ा विचित्र कहानी नहीं है, मैथ्स, फिर मैथ्स से बायोलॉजी, और बायोलॉजी के साथ कथक में भी आप रहे, तो ऐसा लगा कि, ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत सारी चीजों में का एक्सपीरियंस लेना चाहती थी, या आपको शौक था कि
1: मुझे
0: शौक था?
1: और मेरे एक गुरु आबिद हुसैन खान साहब थे, वो बीनकार थे, रेडियो आर्टिस्ट थे, और उन्होंने मुझे सितार, तबला, गाना सब सिखाया।
0: अरे वाह,
1: जब मैं स्कूल में ही थी तब।
0: तो आप सितार भी प्ले किए?
1: सितार भी बजाती थी।
0: अरे वाह
1: जी,
0: पूनम जी, कैसे निकाला इतना समय? डॉक्टर के लिए तो बहुत मुश्किल है। जो कुछ मेरे मित्र डॉक्टर हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या अगले जन्म में आप डॉक्टर बनना पसंद करेंगे, तो अपनी लाइफ की जो वो देखते हैं कि व्यस्तता, उसके बाद बोलते हैं कि हम इस बंधन में बंध गए हैं और हम इससे निकल नहीं पाते, क्योंकि जितना सक्सेस होता है उतनी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। आप पेशेंट सोचते हैं कि आज कम हो कल कम हो, वो और बढ़ते चले जाते हैं, भीड़ बढ़ती चली जाती है, और आपको, आप अकेले व्यक्ति हैं, कैसे उनको टाइम देंगे? तो वो छुटना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइबिलिटीज, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो अपने पेशेंट से उनको दूर नहीं कर पाती। आपके साथ भी ऐसा है कि ढेरों पेशेंट आपका इंतजार करते हैं, लेकिन पूनम माथुर तो एक ही है।
1: हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैंने एक चीज सीखी है। एक स्वामी जी थे
0: जी।
1: वो बोलते थे कि मैंने IIT किया है और मैं जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर का, और मैं फिर बाकी अपना अध्यात्म वगैरह करता हूँ। बोले आप लोग ऐसे हो जो कि आपका प्रोफेशन है और उस प्रोफेशन में ही आप सेवा कर रहे हो, तो आपका जीवन धन्य है कि आप अपने पेशेवर, मतलब जो पेशा है उसी में आपको सेवा का मौका मिल रहा है। तो एक ही जो सेवा करना, बोले हम तो एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं और फिर हम किसी को सेवा करने के लिए, या तो पढ़ाने या कुछ भी करने हम जाते हैं, या तो किसी दीन दुखी की मदद करना, जो कि हमने MY में रह के, MTH में रह के जो गरीब महिलाओं की, उनका इलाज करना, उनके उनके चेहरे पे हंसी देखना, तो जितना हमसे बना, जितना मुझसे बना, ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती थी कि हमको अच्छा कार्य करना चाहिए।
0: अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर आप मैथ्स के, आपका सब्जेक्ट नहीं होता, यदि आप बायोलॉजी में भी नहीं होते, आप डॉक्टर भी नहीं होते, डॉक्टर पूनम माथुर भी नहीं होते, और आपको एक ऑप्शन दिया जाता कि आप अपनी स्वेच्छा से इस जहां में क्या बनना पसंद करेंगे, और वो आपको बनने का मौका मिलता, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से, आप अपने हिसाब से अपने आप को डिजाइन करना चाहते, तो क्या आप डॉक्टर बनना पसंद करते, या क्या आपके दिमाग में, मस्तिष्क में क्या आता है, जो आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश कि मैं

0: ये बनती तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, या आपकी खुद की परिकल्पना आपके लिए क्या थी?
1: नहीं, अब तो मैं डॉक्टरी के
0: अब की
1: सिवा
0: बात
1: और
0: नहीं
1: कुछ
0: है,
1: नहीं
0: अब की बात
1: सोच
0: नहीं
1: सकती
0: है।
1: हूँ क्योंकि
0: जैसे जो
1: इंटरेस्ट तो
0: हमारे
1: बहुत है।
0: जवानी के सपने होते हैं ना, कि मैं ऐसा कर लूंगा, या मैं वैसा बनूंगा, या मैं वैसा करूंगा। करियर के लिए तो इंसान जाता है, फिर उसमें रम जाता है, वो उसको पसंद भी आने लगता। लेकिन एक जो ख्वाहिश हमेशा के लिए आपके अंदर चलती है, ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी रही?
1: ख्वाहिश में ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ऐसा ये बनती तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन जैसा उस समय इतना मतलब एडमेंट भी नहीं थे, इतना
0: जितना
1: कोमल वो
0: आज का
1: रहता
0: जमाना है
1: था
0: वैसा
1: कि
0: नहीं था।
1: जी
0: जी, जैसा परिवार गाइड
1: जी
0: करता था उस
1: जी
0: तरफ हम सोचना शुरू कर देते थे।
1: और अभी भी जब मौका मिलता है तो जो जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। मैं गार्डनिंग भी करती हूँ, गाना भी गाती हूँ, डांस भी करती हूँ, सब चीज करती हूँ।
0: चलिए, तो इस मौके पे अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपका कोई ऐसा पसंदीदा गीत जो आपको बहुत पसंद है, आपको भी हम सुनवाएं और हमारे श्रोताओं को भी सुनाएं, तो कोई ऐसा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: संजीव जी, ममता फिल्म का रहे ना रहे हम।
0: मैं क्या करेंगे, हम
1: जी
0: रोशन का संगीत है, बहुत खूबसूरत गाना है, और जब भी ये प्ले होता है तो हर व्यक्ति उस गाने को अपनी फीलिंग्स के साथ उस गाने को देखना पसंद करता है, सुनना पसंद करता
1: जी
0: है। आइए आपके साथ ये गाना सुनते हैं।
2: रही।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आपके माध्यम से हमारे तमाम श्रोताओं को भी सुनने को मिला और हमें भी सुनने को मिला। माथुर मैडम, आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो आपको बहुत संबल देती है, और हमारे यूथ जो नित दिन प्रतिदिन संघर्ष की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो भी पूनम माथुर बन सके, उनका भी जीवन इतना सक्सेस हो सके, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर दुनिया उनको याद करे, उनका काम ऐसा हो, इन सारी बातों के लिए हमारे यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और वो किस तरह से अपने जीवन को ले आगे बढ़े, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं यूथ के लिए यही कहना चाहूंगी कि एम्बिशियस तो सब होते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी समझ रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना, थोड़ा समझौता करना, थोड़ी सहनशीलता रखना, क्योंकि जब भी आप कहीं पे भी करते हैं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं या आप अपने घर की बात हो या कोई जैसे शादी होकर लड़कियां जाती हैं, तो जहां पे भी जाते हैं, आप ऑफिस में हो चाहे किसी अस्पताल में हो चाहे वो कहीं पे भी हो, आपको एक आप एक सोशल पर्सन हो, एक सोसाइटी में रहते हो, एक सामाजिक व्यक्ति हो, तो समाज में रह के हमको सब तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, और सब जब हम सबके साथ रहते हैं तो सब तरह के लोग मिलते हैं, हर स्वभाव वाले रहते हैं, तो हमको उनके साथ एक तालमेल बना के और एक समझ के साथ हमें एडजस्ट करते हुए जीवन बिताना चाहिए, तो वो एक सक्सेसफुल जीवन रहेगा, नहीं तो हम स्ट्रेस में

0: गुस्से में और तनाव में ही जीते रहेंगे।
1: आपके पेशेंट के बीच में कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा किस्सा, या आपकी सर्जरी के दौरान कोई ऐसी बात हुई हो जो आपको बहुत अलग लगती है, या हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहें? इतने बड़े जीवन में बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे आपने, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशंस जब आपको लगा कि ये कैसे होगा और फिर उसको अचीव किया, ऐसी कोई बात है?
0: एक पेशेंट आई थी रतलाम से, और उसको जो प्लासेंटा था वो बहुत ज़्यादा एडहेरेंट था, और यूरिन मतलब ब्लैडर होती यूरिनरी ब्लैडर में भी घुस रहा था, जिसको हम प्लासेंटा परक्रीटा बोलते, तो वो था। और उसको ये बोला गया था कि ये जब भी होगा तो बहुत मुश्किल होगा, आगे बता नहीं सकते हैं कि कैसे रहेगा, क्योंकि कई बार ब्लैडर में घुस जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो वो जानलेवा हो जाती है। तो ऐसे में फिर वो यहाँ पे आई, फिर उसको हमने MTH में भर्ती किया, उसको काफ़ी दिन हमने 2 महीने रखा हमारे पास, और फिर जब उसको ऑपरेशन के लिए लिया तब वो बहुत चिंता में थी, उसको लगा कि पता नहीं वो बचेगी कि नहीं। और जब अंत में हम लोग ऑपरेट करे, पूरा टीम थी मेरे साथ, और हमने जब उसका ऑपरेशन किया और एक अच्छा स्वस्थ बच्चा उसको मिला और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, उसकी जान बच गई, तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग गए और वो इतनी कृतकृत्य थी जैसे उसका नया जन्म हुआ है। तो माँ और बच्चा दोनों का जो एक दोनों के चेहरे पे, बच्चा की तो खैर बच्चा स्वस्थ था इसलिए, और माँ के चेहरे पे मुस्कान देख के बहुत ही अच्छा लगा, उसका बयान नहीं कर सकते
1: हर
0: जो।
1: डिलीवरी के बाद जितने भी पेशेंट हैं, उनके
0: जी
1: मम्मी पापा या दादा दादी, जब आप बेबी बाहर लेकर आते हैं या उनको बताते होंगे, तो उस वक्त सब व्यक्ति आपको, एक डॉक्टर को स्पेशली जो गायनेकोलॉजिस्ट है,
0: जी
1: उसको भगवान के स्वरूप में ही देखता होगा, क्योंकि
0: जी आना
1: उसने उनके परिवार के लिए, तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो
0: हाँ,
1: कैसा
0: वो
1: लगता
0: बयान करने के बियॉन्ड है, मतलब उसको
1: होगा?
0: किसी तरह से बयान नहीं कर सकते जो खुशी और जो उनके आंखों में जो चमक और जो वो रहती है, एक खुशी रहती है उनके उसमें, उसका बयान करना वो कैसा लगता है वो बहुत ही मुश्किल है। पर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि कभी भी किसी के साथ अगर आपकी डिस्प्यूट होती है, मैं मतलब आप युवा साथियों के लिए बोलूंगी कि कभी आपके सहेलियों से या फैमिली में कभी कोई कहा सुनी हो जाती है या कोई भी मतलब झगड़ा हो जाता है, तो आप उस व्यक्ति का वो समय याद करें जब उसने आपके लिए बहुत अच्छा कुछ किया हो, तो आपका जो भी गुस्सा है या जो आपकी नफरत है वो कम
1: कम
0: हो
1: हो जाएगी,
0: जाएगी।
1: प्रेजेंट को ना
0: और
1: देखें।
0: जी हाँ,
1: जी
0: और
1: जी
0: उससे ये मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था और वो मुझे हमेशा याद रहता है।
1: एक व्यक्तिगत सवाल,
0: जी
1: आप सास कैसी हैं?
0: ये तो मेरी बहू
1: अच्छा, माता जी की रोल में, मदर
0: बताएगी
1: की रोल में बच्चों के साथ कैसा रहा आपका?
0: बच्चों के साथ मैं स्ट्रिक्ट भी थी
1: अच्छा, बिल्कुल
0: और उनके साथ खेली
1: पिता
0: भी
1: की तरह, पिता की तरह। लेकिन आपकी मुस्कुराहट से तो लगता नहीं कि आप इतना स्ट्रिक्ट रही
0: नहीं पढ़ाना उन
1: होंगी।
0: लोगों को आगे बढ़ाना उसके लिए
1: बहू से
0: तो,
1: बढ़िया बनती है
0: और
1: आपकी?
0: हमसे इतना अच्छा रहा कि दोनों बच्चे डॉक्टर बने, कहीं कुछ भी बनते, पर दोनों अपने मेरिट से सिलेक्ट हुए। और आज बेटी पूजा वो UK में है, मैनचेस्टर में, और उसके पति प्रांशु अग्रवाल हैं, वो ऑर्थोपेडिक्स के बहुत सक्सेसफुल FRCS की और बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, और वो गायनेकोलॉजिस्ट है, और बेटा साइकियाट्रिस्ट है और बहू डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो हमारी एक मेरी पूरी मेरा सब लोग बहुत ही बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, और मैंने यही कमाया है, हम यही सोचते हैं कि हमको यही सुख सबसे बड़ा सुख मिला है।
1: इस कार्यक्रम को हम समापन दें,
0: जी
1: चलते चलते बहुत ऐसी बातें आपसे हुई है। राजकुमार सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपके हस्बैंड के बारे में?
0: मेरे हस्बैंड देवता तुल्य आदमी है।

0: उनको कभी गुस्सा नहीं आता,
1: मतलब हर हस्बैंड को नहीं आता
0: वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हर हर कदम पे मेरे साथ रहते हैं।
1: जी।
0: और मैंने जो माँ बाप की भी उन्होंने उतनी ही सेवा की जितनी मैंने की, और उसके लिए मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। और ईश्वर करे हमारा इसी तरह से जीवन हंसते खेलते निकल
1: दोनों को साथ में समय
0: जाए।
1: मिलता है, दोनों बहुत
0: जी
1: बड़े
0: जी अब
1: डॉक्टर
0: तो रिटायर हो गए,
1: हैं,
0: हम लोग साथ में सुबह
1: अच्छा
0: शाम रहता है।
1: खासा समय
0: हाँ
1: मिलता
0: जी
1: है। डॉक्टर पूनम माथुर, जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट, आज हमारे साथ रही और उनसे बहुत सारी बातचीत की। जीवन के बहुत सारे जो अंतरंग के पक्ष होते हैं, जो उनके अतीत की अनुगूंज थी, वो हमने उनसे जानने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं कि इन बातों को सुनकर आप भी अपने जीवन को उस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे जहां आप एक नया मुकाम पा सकते हैं और अपनी बातों को, अपने जज्बातों को, अपने आप को एक मंजिल तक लेके जा सकते हैं। डॉक्टर पूनम माथुर जी, आप स्टूडियोज में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद संजीव जी आपका कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंतरंग, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

लोक संगीत लीजिए, इस कार्यक्रम में सुनिए ममता शर्मा की आवाज में ये मालवी लोक रचना।

लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मालवी लोक रचनाएं। आइए सुनवाते हैं ममता शर्मा की आवाज में ही एक और लोक रचना।

ममता शर्मा की आवाज में गाई इस मालवी लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी इंदौर है, सुगम संगीत। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए मन्नाडे की आवाज में ये रचना।

सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं मन्ना डे, और मन्ना डे की आवाज में अब हम आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का।

मन्ना डे की आवाज में गाई इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है, शास्त्रीय संगीत। लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद मोइनुद्दीन खां का सारंगी पर बजाया राग सालग वराली तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद मोइनुद्दीन खां का सारंगी पर बजाया राग सालक वराली तोड़ी और शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी इंदौर है। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले की जाएगी।
1: प्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वनगमन पथ और देवगुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर यह प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागायच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार ID बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव

0: उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जांचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में एआई टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
2: ये आकाशवाणी इंदौर है। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
3: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश जैन। चलिए एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहला फोन कॉल लेते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो हेलो
0: हेलो।
1: हाँ नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: भाटिया बोल रहा हूँ। विजय भाटिया।
0: विजय भाटिया जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: एलआईजी से।
0: एलआईजी
1: इंदौर।
0: इंदौर, क्योंकि एलआईजी और एमआईजी अमूमन शहरों में होते हैं।
1: हाँ, ये इंदौर का बता रहा हूँ।
0: आप इंदौर का बता रहे
1: हैं? इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: वाह, इंदौर के मौसम के बारे में आप बताएंगे?
1: गर्मी कम है वैसे अभी तो।
0: अच्छा,
1: सुबह शाम थोड़ी ठंड होती है, लेकिन दिन में गर्म रहता है।
0: दरअसल आपसे पूछने का ये सबब ये था कि हमारे जो श्रोता हिंदुस्तान भर में आपकी आवाज सुन रहे हैं, वो कम से कम इंदौर के मौसम का हाल तो जान ले।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो विजय जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गीत श्री 420 पिक्चर।
0: और गीत के बोल?
1: दिल का हाल दिले सुन वाला, सीधी सी बात मिर्च मसाला।
0: दिल का हाल सुने दिल वाला। इस गीत का आपके जीवन से कोई ताल्लुक है या बस पसंद है?
1: कोई ताल्लुक नहीं है, सुनना अच्छा लगता है।
0: पसंद है? तो चलिए, आपकी पसंद हमारी भी पसंद, बल्कि हमारे लाखों श्रोताओं की भी पसंद है
1: जी।
0: सुनवाते हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगे?
1: नहीं, कुछ नहीं कह सकता हूँ मैं बस।
0: बिल्कुल, तो आप मत कहिए, आपके दिल की बात हम कहते हैं।
1: हाँ बिल्कुल।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते भैया।
0: जी नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भैया, आप लोग?
0: प्रभु कृपा है, सब कुछ बहुत बढ़िया। और आप लोगों से बात करके, आपसे मिलके और भी बढ़िया हो जाता है।
1: हमको खुशी मिलती है भैया, बहुत आप लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, अच्छा लगता है।
0: बस खुशी खुशी में हम ये भूल गए कि आपका नाम क्या है, ये तो पूछना भूल गए।
1: मैं कोदवा साझा छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता।
0: राम स्वरूप गुप्ता जी, प्रणाम स्वीकार करें हमारा।
1: हमारा प्रणाम रही आपको भी।
0: गीत कौन सा सुनना चाहेंगे राम स्वरूप जी? अब
1: आज दिया राजा रंग का, वो फिरकी वाली रफी साहब की आवाज में।
0: वो फिरकी वाली तू कल फिर आना।
1: हाँ भैया।
0: इस गाने का आपके जीवन से कोई ताल्लुक तो नहीं ना?
1: नहीं भैया, गाना सदाबहार है भैया, रफी साहब का और संजीव कुमार के ऊपर है, सदाबहार गीत है भैया, सुनने लायक, अच्छा भी लगता है।
0: मैंने सवाल पूछा कि आपके जीवन से कोई ताल्लुक तो नहीं, तो आप जो एक रोमांटिक हंसी हंसे थे।
1: ये गाने ही रोमांटिक है भैया, जीवन से ताल्लुक तो नहीं है, गीत सुनने में अच्छा लगता है, रोमांटिक गीत है।
0: अरे वाह, आपने गीत को बहुत अंदर तक उतार लिया है, तो चलिए आपके साथ और कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: हाँ भैया, पहले तो इस गीत को आप लोग भैया लोग सुनेंगे, आरजे भैया लोग साथ, आरजे पान के साथ, उसके बाद मेरे परिवार भी है, बड़ा लड़का प्रियस गुप्ता, सिद्ध लड़के श्याम गुप्ता, सरजान गुप्ता, लड़की सेकंड नंबर प्रीति जैन, सिद्ध लड़के आनंद जैन, हर्षित जैन, छोटा लड़का विजय गुप्ता, पतिन का नीरज गुप्ता, उसके बाद रेडियो इंदौर के श्रोता भाई बंधु उसके साथ सुनेंगे भैया।
0: बिल्कुल, आपने रेडियो की तरंगों पर सवार, आपने अपने परिवार को इतना बड़ा बना लिया कि परिवार के सदस्यों के साथ सारे श्रोताओं को भी जोड़ लिया। निश्चित रूप से ये स्नेह पारिवारिक ही है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, रेडियो से जुड़े रहें, और ये रहा आपकी पसंद का गीत।
1: धन्यवाद।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: MH हॉटलाइन कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमारे अगले कॉलर हैं। हेलो।
5: हेलो, नमस्ते राजेश जी।
4: जी नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। कौन सा आप बोल रहे हैं?
5: मैं अनिल भंडारे सुदामा नगर से बोल रहा हूँ।
4: सुदामा नगर, इंदौर।
5: इंदौर।

0: हाँ, क्योंकि सुदामा नगर, एमजी रोड, एलआईजी, हम उन शहरों में होते हैं, इसलिए पूछना पड़ा।
1: ना सुदामा नगर।
0: और रेडियो के तो आप काफी नियमित और पुराने श्रोता भी हैं हमारे।
1: नियमित और पुराने गीतों के शौकीन ज्यादा हैं।
0: अरे वाह, तो आकाशवाणी की ओर से आपको धन्यवाद भी हम प्रेषित करते हैं, स्वीकार करें।
1: हम भी आकाशवाणी धन्यवाद देते हैं कि हमारा हमेशा पुराने गाने सुनाते रहते हैं।
0: तो आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हम पुरानी फिल्म जी चाहता है का सुमन कलापुर की याद में मोहम्मद रफी के साथ उन्होंने गीत गाया, बहुत मधुर गीत है, मेरी जिंदगी तेरे प्यार में यहाँ गुजर गए, हर हाल में गुजर गए।
0: जी तो हमारा भी चाहता है आपके पसंद का गीत सुनवाने का, और हाँ, जी चाहता है हम छोड़ चले हैं महफिल को।
1: हाँ याद रखना।
0: हाँ, तो आप तो वैसे ही हमें याद रखते हैं, आकाशवाणी को वैसे ही याद रखते हैं, आगे भी याद रखेंगे, ये अपेक्षा तो हम आपसे कर ही सकते हैं।
1: हम तो हमेशा आपके याद करके कार्यक्रम सुनते हैं आपका, आज आनंद लेते हैं पुराने गानों का।
0: बिल्कुल, ये
1: और आपकी आवाज का भी आनंद लेते हैं हम।
0: निश्चित रूप से अनिल भंडारे जी, हम कहें कि मिली है आपसे जो इतनी मोहब्बत, ये हमारा हक नहीं, हमारी तकदीर है।
1: हम तो ये कहेंगे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, ये हम आपको कहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो को आपने जिंदगी की तरह अपने जिंदगी में शामिल किया है, और बिल्कुल ये भी सांसों की तरह वफा करेगी, ये वादा है हमारा। चलिए आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं।
1: धन्यवाद आपको।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? नहीं
0: अब पूछते हैं कौन हैं आप?
1: नहीं नहीं हाँ, भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंज वासुदा से। हाँ,
0: राजेंद्र नगर गंज वासोदा।
1: आपके नियमित श्रोता।
0: हमारे आपने जो नियमित रूप से आकाशवाणी को अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत दी है, उसके लिए
1: बिल्कुल
0: हमारा
1: सर,
0: धन्यवाद स्वीकार करें।
1: बिल्कुल सर, आपके तो जो भी कार्यक्रम आते हैं उसकी प्रक्रिया भी आपको भेजते रहते हैं हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद भी
1: बिल्कुल,
0: स्वीकार करें और ये स्नेह बनाए रखने का वादा भी करें।
1: अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल आकाशवाणी के लिए बिल्कुल जरूरी है।
0: हमारे बहुत सारे श्रोताओं जिनसे हमारी बात होती है, आकाशवाणी
1: बिल्कुल
0: जिनकी जिंदगी में बिल्कुल शामिल है,
1: बिल्कुल,
0: मतलब।
1: हाँ बिल्कुल सर, और ये एक तो ज्ञान का खजाना है।
0: और आप जैसे श्रोता जो हैं, हमारी भी हथेलियों में तकदीर की लकीर की तरह अंकित हैं,
1: बिल्कुल
0: हमेशा
1: सर,
0: हमारे
1: बिल्कुल
0: साथ हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भागचंद जी, गीत कौन
1: नहीं
0: सा सुनना चाहेंगे? हम अपनी बातों में ये भूल गए कि हमें आपको गीत भी तो सुनवाना है।
1: बिल्कुल सर, तो हम फिल्म का नाम है तुम बिन।
0: जी, और गीत के बोल?
1: आप बोल तो सर वो कोई सा भी सुनवा देना।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, और सर मौसम कैसा है अभी इंदौर में?
0: इंदौर में थोड़ी गर्मी, थोड़ी सर्दी। अब ये
1: हाँ
0: तो कुदरत
1: गर्मी,
0: के नज़ारे हैं, प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के किनारे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही
0: ये ऊपर वाले
1: आपने।
0: की लीला है। हर हर
1: बिल्कुल
0: मौसम का हर हिस्सा, हर पहलू शायद इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी भी है।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। और सर हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगा के आइए, गंज वासुदा आइए आप।
0: भाई देखिए भागचंद जी, ये काम आपने गलत किया है ना। मतलब आपने ऐसा नाम
1: बिल्कुल
0: ले दिया, मुंह में पानी आ जाए तो कोई क्या करे।
1: सर, बिल्कुल आइए आइए, गंज वासुदा
0: और सिर्फ हम
1: आइए।
0: ही नहीं बल्कि हमारे लाखों श्रोता जो इस समय MH हॉटलाइन सुन रहे हैं, भाई
1: बिल्कुल
0: भाई
1: सर, बिल्कुल
0: उनके भी तो मुंह में पानी आएगा ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, फेमस पानीपुरी सेंटर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए आपका गीत सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल।

0: हेलो
1: जी, एमएच हॉटलाइन।
0: जी, एमएच हॉटलाइन में स्वागत है आपका।
1: जी सर नमस्ते, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी नमस्कार, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, आपके तो नाम में ही प्रेम है।
1: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, हमें भी आप लोगों से बात करके आपके पसंद के गीत सुनवा के बेहद अच्छा लगता है। प्रेम सिंह जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी पतंगा फिल्म का है, मेरे पिया गए हैं रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन।
0: कोई टेलीफोन आया आपको?
1: हाँ जी, मैंने तो फोन आपको लगाया पहले।
0: अच्छा, तो टेलीफोन हमें आपका आ गया।
1: जी जी बताओ सर, मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ मैं
0: जी,
1: और 2005 से आकाशवाणी इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ।
0: 2005 से?
1: जी हाँ, पहले रेडियो पर सुनता था, लेकिन अभी फिलहाल आकाशवाणी ने जो मतलब नेटवर्क बढ़ाया है अपना,
0: ऐप के जरिए सुनते हैं।
1: हाँ जी, ऐप से भी सुनता हूँ, बड़ा स्पष्ट प्रसारण मिलता है। और फिलहाल मैं बताऊँ, अभी मैं झालावाड़ में हूँ, यहाँ भी आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ।
0: झालावाड़ यानी ये राजस्थान?
1: हाँ जी,
0: मतलब एक तो गर्मियों का मौसम, ऊपर से झालावाड़ जहाँ गर्मी कई गुना बढ़ जाए।
1: जी गर्मी तो काफी है यहाँ पर, बट आपको बताऊँ, कुछ काम था हमें, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अच्छा। 4 दिन से नहीं है अभी।
0: अरे वाह, तो चलिए, वहाँ की गर्मी भी और आकाशवाणी से आपके रिश्तों की हरारत दोनों कायम रखते हैं। आपके गीत पे एक बात याद आ रही है, मैं क्यों उसे फोन करूं, मैं क्यों उसे फोन करूं, क्या उसे नहीं मालूम ये मौसम की पहली बारिश है।
1: जी
2: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: सर, नमस्कार। हेलो,
0: जी
1: नमस्ते।
0: जी नमस्कार।
1: मैं रानू गुप्ता बात कर रही हूँ, देवास से। जी
0: रानू गुप्ता जी,
1: हाँ
0: कैसे हैं आप?
1: सर, मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपके क्या हाल चाल?
0: जी, प्रभु कृपा है और प्रभु आपको भी हमेशा इतना ही अच्छा रखे, ये
1: जी, थैंक यू।
0: कामनाएं, शुभकामनाएं।
1: और आप भी अच्छे रहें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। कौन सा गीत
1: और
0: सुनना चाहेंगे आप?
1: हाँ, आज मुझे एक पुराना सॉन्ग सुनना है। मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन, और इसी में सॉन्ग है चॉकलेट लाइम जूस।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं। रानू जी, आप अपने बारे में कुछ बताएं, आप प्रोफेशनल हैं या गृहिणी?
1: सर, मैं दोनों ही समझ लीजिए, मैं हाउस मेकर हूँ।
0: अरे
1: मेरी
0: वाह,
1: यहाँ हार्डवेयर, प्लाई फर्नीचर प्लस किराना शॉप है, तो हस्बैंड भी देखते हैं, मैं भी मतलब उनके हेल्प करवाती हूँ। मतलब जो मैनेजमेंट है वो मैं देखती हूँ, बाकी सारा काम वही हैंडल करते हैं।
0: मतलब मेन काम मैनेजमेंट होता है जो आप देखते हैं।
1: हाँ, वो नहीं, मैनेजमेंट का ऐसा है कि कहाँ से कितना माल आया, कहाँ जाना है, कहाँ से पेमेंट लिया है, वो सारा काम मेरे हैंड ओवर है। बाकी जो भी है ना, सब वो हस्बैंड देखते हैं। मतलब मैं थोड़ा करती हूँ, बट वो बहुत ज्यादा करते हैं।
0: अरे वाह, बिल्कुल, कंधे से कंधा मिलाकर, शायद यही जीवन की सच्चाई है, कंधे से कंधा मिलाकर आगे
1: जी,
0: बढ़ना,
1: और
0: जीवन के सफर को तय करना।
1: इससे पहले मैं महिंद्रा फाइनेंस में जॉब करती थी, बट क्या है कि मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि ना मेरे यहाँ खुद इतना काम है, तो मैं कहाँ जाऊंगी काम करने के लिए,
0: बिल्कुल सर, जीवन का
1: इसलिए।
0: सही
1: जी
0: निर्णय था। अब रानू जी, आप प्रोफेशनल लाइफ भी, हाउसवाइफ भी और रेडियो का साथ भी, तीनों एक
1: जी
0: साथ कैसे कर पाते हैं?
1: देखिए सर, मैं फोन लगाती हूँ तो मोबाइल तो मैं दो मोबाइल से ट्राई करती हूँ, रिडायल पर छोड़ देती हूँ, और काम भी करती रहती हूँ, क्योंकि काम सुबह सुबह आपको पता ही है, नाश्ता बनाना, खाना वगैरह, सारे मतलब बहुत सारे काम होते हैं,
0: हाँ, खासकर
1: तो वो क्या
0: महिलाओं
1: है।
0: का ये वाला समय जो है बहुत व्यस्त होता है, एक साथ कई कई काम कर रही होती हैं वो।
1: और मेरा काम इसलिए जल्दी होता है क्योंकि मैं ना सुबह 5 बजे उठती हूँ, इसलिए तो फटाफट, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब खानदानी बीमारी है सुबह उठने की ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रूल्स हो मेरे यहाँ कि उठना ही है
0: नहीं,
1: जल्दी, बट
0: बीमारी
1: मैं उठ
0: शब्द का
1: जाती
0: आपने
1: हूँ।
0: गलत इस्तेमाल किया, इसे गुण कहते हैं। तो
1: जी
0: चलिए, हम आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं,
1: ओके,
0: आपसे मिलकर, आपसे बात।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। एम एच हॉटलाइन में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते सर, थैंक यू।
0: जी, थैंक यू। आप दीजिएगा, पहले आपके पसंद का गीत हम बजा दें तब तो आपका थैंक यू जायज माना जाएगा ना।
1: जी, तो अब उसके बाद हमारा कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए पहले थैंक यू
0: अरे
1: आपको।
0: वाह, आप तो बहुत आगे की सोच के चलते हैं।
1: बिल्कुल, अब आगे थोड़ी ना हम आपको थैंक यू बोल पाएंगे कि
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपका धन्यवाद स्वीकार किया। गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गीत है, मूवी का नाम है सनम रे, उसी का टाइटल सॉन्ग सुनना है। और मैं नंदिनी तिवारी बात कर रही हूँ सागर से। जी
0: सागर से बात कर रहे हैं।
1: बढ़िया
0: सागर का मौसम बढ़िया ही होगा।
1: है, गर्मी हो रही है। और क्या सर, अभी 2 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई थी और अभी तो हुई भी नहीं है।
0: जब गर्मी के बाद थोड़ी सी बारिश होती है, उसके बाद का जो मौसम होता है, वाह।
1: उसके बाद का जो मौसम होता है बहुत गर्मी होती है।
0: ओ, उसके बाद के मौसम में तो कई बार जो है लोग मजाक में आपस में कहते पाए जाते हैं कि वो जैसे
1: जी
0: डोसा बनाने के लिए तवा चेक किया जाता
1: जी जी
0: है ना, वैसा कुछ मौसम हो जाता है।
1: तो अभी तो गर्मी हो रही है, बस सोच रहे हैं कि बारिश हो जाए फिर से। और आप क्या?
0: बस सेम वही मौसम है सागर और इंदौर, बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। देखिए, बिल्कुल एक फोन
1: जी
0: कॉल पे इंदौर आकाशवाणी।

0: आपकी सेवा में हाजिर आपके पसंद के गीत के साथ।
1: जी बिल्कुल।
0: नंदिनी जी, क्या करती हैं आप?
1: हमारी अभी फाइनल हो गई है बीएससी।
0: अच्छा, स्टूडेंट हैं अभी आप?
1: जी।
0: चलिए, तो आपके फाइनल की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और ये गीत
1: जी सर, थैंक
0: आपकी
1: यू।
0: पसंद का। जी, धन्यवाद।
1: ओके सर।

0: हेलो,
1: हेलो सर, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, प्रणाम, कैसे हैं
1: मैं
0: आप?
1: श्रीपाल गोयल दिल्ली से बात कर रहा हूँ सर।
0: अरे वाह, हिंदुस्तान का दिल दिल्ली।
1: जी, बिल्कुल।
0: श्रीकांत जी,
1: श्रीपाल जी, श्रीपाल गोयल।
0: श्रीपाल जी,
1: हाँ जी
0: श्रीपाल जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म है फिर मिलेंगे बेटा।

0: बेताब दिल है
1: जी
0: ये भाई, दिल बेताब है किसी के लिए या गाना पसंद है?
1: आपके लिए सर बेताब था,
0: हाँ
1: बात ही हो गई।
0: अरे वाह, चलिए चलिए, आपकी बेताबियों को मंजिल तो मिली।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: दिल के धड़कने का सबब याद आया, तेरी याद थी अब याद आया। बिल्कुल, आप आकाशवाणी इंदौर और दिल्ली, इनके बीच में ध्वनि तरंगों का ये रिश्ता जो श्रीपाल जी और आकाशवाणी इंदौर के बीच है, निश्चित रूप से बहुत ही हसीन रिश्ता है ये।
1: बिल्कुल जी।
0: क्या करते हैं श्रीपाल जी आप?
1: तो दिल्ली में एक काम करते हैं कंपनी में।
0: अच्छा,
1: ड्यूटी पहुंचे थे, अब ड्यूटी पहुंचते कॉल ट्राई किया तो कॉल भी लग गई।
0: अरे वाह, चलिए आज का दिन बहुत अच्छा है हमारे लिए।
1: जी सर, हमारे लिए भी जी।
0: हाँ, कि आपसे इतनी दूर से बात हुई और हम आपके पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं। तो श्रीपाल जी,
1: धन्यवाद आपका।
0: चलिए, आपकी बेताब दिल को जो है थोड़ी सी राहत देते हैं आपके गीत के माध्यम से।
1: हाँ जी, धन्यवाद आपका।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार। मैं राजाराम नगर देवास से राजू अग्रवाल बोल रहा हूँ सर।
0: राजू भाई, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: ये राजकुमार पिक्चर का गीत है साहब, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत ठीक नहीं। रफी साहब की आवाज में है ये गीत, ये वाला सुनवा दीजिए।
0: राजकुमार फिल्म का नाम है,
1: है जी।
0: फिल्म का नाम राजकुमार है
1: हाँ जी,
0: और गीत के बोल आपने बताए।

0: रंग बदलती दुनिया में इंसान की नियत एक नई गीत है
1: जी। आपका गीत हम देख ही रहे हैं राजू भाई, आप अपने बारे में कुछ बताएं।
0: मैं सर मेरा प्रिंटिंग प्रेस का कार्य है यहाँ पर देवास में,
1: जी
0: मतलब और निवास राजाराम नगर में मेरा निवास है, सिटी कॉन्वेंट स्कूल के पीछे गाँव में,
1: जी
0: और 26 वर्षों से ये कार्य में लगा हुआ हूँ इसके कार्य में,
1: जी
0: और साहब रोजी रोटी चल जाती है इससे।
1: बिल्कुल, बस जीवन में आप जो चाहें वो मिल जाए, वो सबसे सुकून का कारोबार होता है। राजकुमार फिल्म का कोई और गीत भी
0: इसका गीत कोई सा भी सुनवा दीजिए ना, रफी साहब की आवाज में बहुत सारे गीत है इसमें।
1: तो चलिए रफी साहब की आवाज में आपके पसंद का गीत आपको सुनवाते हैं राजू अग्रवाल जी।
0: धन्यवाद।

इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन समाप्त करने की अपने दोस्त राजेश जैन को अनुमति दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम MH हॉटलाइन, ये आकाशवाणी इंदौर है। 11 बजा चाहते हैं, अगला कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किया जाएगा।

ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

0: नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इंतजार केवल समय का बीतना नहीं बल्कि आशाओं का खिलना भी है। जिस तरह तपती हुई धरती आसमान में उमड़ते बादलों को निहारती है, सूखे खेत जिस तरह बारिश की बूंदों के लिए बेचैन रहते हैं, जिस तरह अंधेरी रात भोर की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जागती है, जिस तरह बंद कली सूरज की ऊष्मा लेकर मुस्कुराने का इंतजार करती है, हमें मालूम है कि आप भी ठीक उसी तरह अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनने का इंतजार करते हैं। क्योंकि ये गीत आपके लिए केवल सुर नहीं होते, ये आपके लिए कभी यादों की खुशबू होते हैं, कभी बीते हुए पलों की दस्तक होते हैं, कभी ये गीत दिल की अनकही बातों का आईना होते हैं, तो कभी आपके एहसासों का दरिया होते हैं। तो आपकी फरमाइशों का गुलदस्ता लेकर इस फोन इन कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए कुछ पल जिंदगी की भागदौड़ से चुराएं, कुछ पल यादों की गलियों में बिताएं। आइए कुछ पल संगीत की उस नदी में बहें जहां हर लहर एक नया एहसास लेकर आती है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। दीदी,
0: राजेश जी, कैसा है देवास और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, जैसा भोपाल वैसे ही ये है। यहाँ पर बैंक नोट प्रेस है और जैसे माता चामुंडा की वो है पहाड़ी पे
0: जी,
1: और औद्योगिक क्षेत्र है ये।
0: जी जी जी जी, तो राजेश जी कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: आज? गीत ये सितारी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, तुमको पिया दिल दिया लता जी और उषा मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या बात है,
1: आपका संगीत है,
0: बहुत ही मीठा गीत है लता जी और उषा जी की आवाज में, और मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो चलिए,
1: हमारे लेटर का ध्यान रखो कि लेटर बहुत कम लिए जा रहे हैं इसमें।
0: चिट्ठियाँ आप लगातार लिखिए, पत्र आपके शामिल होंगे, ठीक है? तो राजेश जी, आपने फोन किया, आपका आभार करते हैं और आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रज्ञा कला, जिला जलंधर, पंजाब से।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी मैम, धन्यवाद। आप
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम। रात बारिश भी, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, इसलिए अच्छे होकर फोन लग गया, और भी अच्छे हो।
0: बिल्कुल, यहाँ भी मौसम इसी तरह का है और फोन लग गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। तो रेडियो चल
1: जी
0: रहा है आपका, गीत संगीत में रुचि है आपकी बहुत।
1: जी मैम, गीत संगीत, खास रफी साहब और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे लता जी और रफी जी की आवाज में, अगर वो आपके पसंदीदा कलाकार हैं तो।
1: दिल का हीरा, मोमी का नाम, एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी।
0: दिल का हीरा, इस फिल्म का गीत,
1: जी मैम,
0: एक पत्थर दिल को। ठीक है, तो
1: जी
0: चलिए
1: मैम,
0: लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत आप तक भेजते हैं। आपके दोनों ही पसंदीदा कलाकार, उनकी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी बिल्कुल मैम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: नमस्ते मैम, श्री गंगा मेहरा बात करें नीमच से।
0: नमस्ते, नाम एक बार फिर बोलिएगा।
1: गंगा मेहरा।
0: गंगा मेहरा जी, कैसी हैं?
1: जी अच्छे मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत का शौक रखती हैं?
1: जी मैम।
0: किस तरह के गीत पसंद आते हैं आपको?
1: 90 के दशक के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं और ओल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा नए होता है वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते।
0: तो मतलब 90s के गीत पसंद करती हैं और जो पुराने गीत हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज क्या फरमाइश है?
1: मैम मूवी का नाम है बेवफा सनम और गाने बोले दिल तोड़ के हंसती हो मेरा।
0: दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए, गुनगुनाइए और इसी तरह खुश रहिए। बहुत बहुत आभार आपने फोन किया।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी,
1: जी, बस
0: क्या करती हैं आप?
1: घर में ही काम।
0: घर का काम करते हुए रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका?
1: रेडियो बस साथी है मेरा, और क्या, गाने सुनती रहती हूँ और काम भी निपटाती रहती हूँ।
0: जी, बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में रेडियो गुनगुनाता रहता है और आप डूबे हुए से काम करते रहते हैं, तो काम का पता नहीं चलता कि कितना काम किया, कितना वक्त हुआ, और आप बिल्कुल आनंद के साथ समय गुजरता है ना?
1: जी, अब टीवी में तो क्या बैठ कर देखना पड़ती है, ये रेडियो में तो गाने सुनते रहो, अपना भी काम निपटाते रहो।
0: बिल्कुल, टीवी देखते हैं तो फिर काम रोकना ही पड़ता है।
1: मैं नीचे देर से आती हूँ, रात को 9 बजे टीवी देखती हूँ, बस 1 आध घंटे, फिर सो जाती हूँ 11 बजे।
0: और बाकी पूरे वक्त रेडियो चलता है।
1: जी, पूरा वक्त का रेडियो, सब चैनल, कोई से भी,
0: जी,
1: इंदौर है, भोपाल है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रेडियो आपका इतना साथ देता है और आप रेडियो का इतना साथ देती हैं। कौन सा
1: जी,
0: गीत
1: मैं
0: सुनेंगी आज?
1: वक्त पिक्चर का सुनना चाहूंगी। ए मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवां, ये वाला। जी,
0: तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। बहुत
1: ये मेरी
0: ही,
1: मम्मी और बहनों के लिए डेडिकेट रहेगा, क्योंकि वो भी सुनती है।
0: जी
1: मम्मी का
0: जी
1: नाम
0: जी
1: है मंदसौर में रहती है, नूर भी,
0: हाँ।
1: अंजुम, गजाला, शम्मी, शाइस्ता, रुखसाना, रोशन।
0: तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय ये गीत है, आप तक
1: जी,
0: भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: शुक्रिया मैम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कालीचरण यादव, ग्राम पंतल बरादरी से।
0: कालीचरण यादव जी, कैसे हैं?
1: अच्छी है मैडम जी।
0: रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं सब सुनता हूँ, ग्वालियर के आकाशवाणी की प्रोग्राम सुनता हूँ, भोपाल के सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो चल रहा है, ग्वालियर चल रहा है, उसमें नाम बनता है मेरा। हाँ, नाम बनता है मेरे रेडियो में।
0: जी जी, और
1: ग्वालियर पर बहुत प्राण होता है ग्वालियर का।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, किस तरह के कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: मैं पुण्य कार्यक्रम, आपकी परमाश कार्यक्रम।
0: मतलब फिल्म संगीत में विशेष रुचि है आपकी।
1: वो वाले कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं, ग्वालियर के बंद हुए कार्यक्रम से भी चंदा कार्यक्रम होता परमाश।
0: जी जी, कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: गोरा काला पिक्चर सुनवा देना आप, बगैर जता की आवाज में। धीरे धीरे बोल को सुनना ले,
0: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
1: जी जी, ठीक है, प्राण गान पसंद है मेरे को।
0: जी जी, तो कालीचरण यादव जी, आपने हमें फोन किया, आपका गीत आप तक भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मेरी बहना।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे
1: और
0: हैं?
1: आप कैसे हो बहना मेरी? चलो
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, प्रभु की कृपा है आपके ऊपर।
0: हाँ, हमारे कौन से भाई बोल रहे हैं?
1: मैं आपका एक भाई बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ मैं,
0: जी
1: और मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास। पहले रिटायर हो चुका हूँ मैं, शिक्षक था पहले। अच्छा,
0: अच्छा, तो आप
1: रिटायर
0: शिक्षक
1: हो
0: थे।
1: चुके हैं, मैंने पुजारी जी कर काम चालू किया है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, तो क्या करूँ इस उम्र में, तो मैं भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सर्वप्रथम है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ईश्वर का स्मरण तो पूरे जीवन करना चाहिए, है ना?
1: मन नहीं लगता था तो मैंने मंदिर का काम चालू किया है, पुजारी का।
0: जी
1: मंदिर की
0: जी
1: सेवा कर रहा हूँ मैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ
1: हाँ
0: ही रेडियो भी आपका साथ देता होगा,
1: हाँ
0: जाहिर सी
1: रेडियो
0: बात
1: तो
0: है।
1: मेरा बिल्कुल, मैं 1955 और 56 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत पुराने श्रोता हुए आप हमारे।
1: हाँ, पुराना रेडियो है मैडम।
0: जी जी जी जी
1: आज
0: हाँ।
1: मेरे पिताजी भी वही सुनते थे, मेरा बालक भी वही सुनता हूँ, और मैं भी सुनता हूँ। आकाशवाणी ये आकाश में अमर है, और ये सबके दिलों में बसी है आकाशवाणी,
0: बिल्कुल, सबके दिलों में
1: सबके
0: बसी है।
1: दिलों में। और
0: और
1: हमारा एक नीमच में मेरा भाई है, 82 साल का, उनका नाम आरसी जैन,
0: जी जी
1: वो भी बहुत पुराने गाने के बहुत आशिक है। तो
0: जी जी तो देखिए,
1: ये गाना
0: आकाश,
1: उन्होंने मुझे दिया है फागुन का,
0: फागुन फिल्म का गीत कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कौन परदेशी मेरा दिल ले गया।
0: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आशा जी का गाया हुआ गीत। तो
1: बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: मंदिर में प्रार्थना आपके आकाशवाणी परिवार के लिए रोज करता हूँ, सुबह से शाम तक के।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर भाव हैं
1: मेरा
0: आपके।
1: ये आकाशवाणी एक परिवार है मेरा।
0: जी, तो इसी तरह से आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। कुछ पंक्तियाँ पेश है आप तक और सभी सुनने वाले साथियों तक।
0: जी जी
1: कहते हैं, सुबह सवेरे सूरज आता, भाई पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार से दूर भगाता।
0: वाह, तो एक जो नया दिन है वो कोरा सा हमारे जीवन में आता है, प्रकाश की भाषा में आता है, और ये आह्वान करता है कि अपने जिंदगी में जो कुछ हम करें वो प्रकाशमय हो, है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: तो संतोष,
1: चंचल और शीतल आवाज की धनी, या यूं कह कि मधुर आवाज की मलका, आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन भी रहेगा।
0: नमस्कार नमस्कार। तो ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है मौसम?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताऊँ आपसे मौसम की बातें, लगातार प्री मानसून की गतिविधियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जारी है, और इस
0: जी
1: बीच हमारा जो बघेलखंड है, खास करके उमरिया और शहडोल के आसपास, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है, और अभी हवाएं चल रही है मैडम दिन में।
0: चलिए, तो मतलब मौसम सुहाना है।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: मैम।
0: इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, जब कार्यक्रम चलते हैं ना, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है आपका। जो कार्यक्रम आता है वतन करा, इतना ऊर्जावान हमें कर देता है, खास करके जब वीर शहीदों की बातें होती है आपके
0: जी
1: कार्यक्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, तो
0: जी
1: बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार भोपाल एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, साथ में विशेषज्ञ महोदय अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रोचक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण होते हैं
0: क्या
1: आकाशवाणी
0: बात
1: मध्य
0: है
1: प्रदेश के माध्यम से।
0: संतोष जी, आप बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हैं, इस बात का हमें बहुत संतोष है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाएं आज?
1: हाँ, मूवी का नाम है धड़कन और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: अगर गुनगुना दें 2 लाइन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: वाह, बहुत ही सुरीला आपने गाया। तो ये जो स्वर है, ये जो मिठास है, आपकी ज़िंदगी में बनी रहे। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया।
1: जी मैम, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार नमस्कार मैडम जी, नमस्कार, मैं जगत सिंह चड़ार ग्राम पिपली अबराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जगत सिंह चड़ार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप रेडियो से जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। गीत संगीत में आपकी रुचि है, जाहिर सी बात है। किस तरह के गीत पसंद करते हैं
1: जी? पुराने गाना अच्छे लगते हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं, 19 के अच्छे लगते हैं।
0: 90s के? अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी हम बैठे ही रहते हैं, दिव्यांग है तो किराने की दुकान चला रहे अपनी।
0: अच्छा, आपकी दुकान है और दुकान के साथ आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज, बताइए
1: जी? फूल और कांटे फिल्म का सुना दो, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है।
0: वाह, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। मैंने प्यार

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नाम बताइएगा
1: मेरा
0: अपना।
1: नाम जीनत अंसारी है, मैं महेश्वर से बोल रही हूँ।
0: जीनत अंसारी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हैंडलूम का काम करती हूँ।
0: अच्छा, महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: हाँ, वर्ल्ड फेमस है
0: बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध है ना? तो
1: जी।
0: आप एक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे दिन में काम करना होता है?
1: मैम, घर का काम करके जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कर लेते हैं।
0: अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी
1: नहीं,
0: सीख रहे
1: बच्चे
0: हैं?
1: अभी छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं।
0: अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे हैं।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: जीनत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है?
1: जी मैम, मैंने 1 फरवरी को लगाया था
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख बताई है, इससे हमें बहुत
1: जी,
0: सुविधा
1: मुझे
0: हो
1: याद
0: जाती
1: है।
0: है। इससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर श्रोता हमें तारीख बता दें तो हम झट से अपना रजिस्टर पलट कर देख लेते हैं कि हाँ इस तारीख को बात हुई थी और इसके बाद बात नहीं हुई है, तो एक आसानी हो जाती है। तो हमें लगता है कि आपकी बात से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी एक प्रेरणा लेंगे और वो तारीख याद रखेंगे कि किस तारीख को पिछली बार फोन किया था। तो
1: जी
0: जीनत
1: मैम,
0: जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कौन सा गीत सुनवाए बताइए।
1: मुझे तलाश मूवी का गीत सुनना है,
0: गीत के बोल,
1: यार बदलना जाना मौसम की तरह।
0: यार बदलना जाना मौसम की तरह, बहुत ही खूबसूरत
1: जी
0: गीत। तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तलाश फिल्म का। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद आपने
1: मैम।
0: हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का हम। नमस्कार, नाम बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका रेडियो कैसा है?
1: हमारा रेडियो तो बहुत अच्छा है और 90 साल हमारे रेडियो ने जो है पूरा कर लिए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हों, एक शतकीय पारी पूरी हो, है ना?
1: और 150 साल पूरे हो।
0: बिल्कुल, और उसका हम जश्न मनाएं, पहले तो 100 साल का जश्न मनाएं। तो देखिए इतनी लंबी
1: लेकिन
0: यात्रा।
1: सुनीता जी क्या है
0: जी,
1: ये रेडियो की महत्ता आज भी घटी नहीं है। देखिए इतने साधन हो गए मोबाइल टीवी, लेकिन रेडियो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जगह

0: आकाशवाणी अपनी जगह क्लियर है, वो आकाशवाणी से कोई भी अभी ऐसा वो नहीं है कि जो आकाशवाणी ना सुनते हों लोग बाग।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी की एक अपनी जगह है जो बनी हुई है, और हमारा तो ये मानना है कि ये जो जगह बनी हुई है ये हमारे श्रोताओं की वजह से बनी हुई है।
0: देखिए श्रोता और आकाशवाणी
1: जी
0: ये एक दूसरे के पूरक है।
1: हाँ,
0: आकाशवाणी है श्रोता नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, और श्रोता है आकाशवाणी नहीं है कोई मतलब नहीं।
1: तो चलिए, ये जो एक सुंदर यात्रा हम लोग की मिली जुली सी जो चल रही है ये जारी रहे, फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि फरमाइश क्या है आपकी।
0: जी बिल्कुल सुनीता जी, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।
1: गीत के बोल,
0: गीत के बोल है कि आई जवानी मोदी चुनरिया सर से सर की जाए,
1: और
0: ये गीत हमारे प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल जी और जो है दिनकर सिंह जी को और विजय कुमार पांडे हो गए और मणिराम पाल जितेंद्र पाल जी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
1: अच्छा, तो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है, हम चाह रहे थे कि आप गुनगुना देते दो लाइन।
0: क्या बात है, तो फिर इसी गीत को गुनगुनाऊं कि कोई बुंदेलखंडी गीत
1: नहीं? अरे आपने तो लालच ही दे दिया। तो पहले तो एक बुंदेलखंडी गीत सुनाइए, फिर ये गीत गुनगुनाइए ताकि फिर हम गाना आपके लिए प्ले करें।
0: बुंदेलखंडी गुनगुना रहा हूँ।
1: जी जी।
0: हाय बल हाय बल मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बल। बहुत प्यारा गीत।
1: वाह वाह वाह, बहुत ही मधुर गीत। और देखिए, गर्मी की आपने बात की तो यह मौसम कह रहा है कि हाँ अब राहत होने को है, तो हम चाहते हैं कि अपनी फरमाइश भी आप गुनगुना दें तो हम आपका गीत आप तक भेज दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जय, इधर संभालू गिरे उधर को नांगन सी लहरा।
1: वाह वाह,
0: कविता कृष्णमूर्ति जी की
1: आवाज़। फूलचंद पाल जी, आप बहुत ही सुरीले श्रोता हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया, आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे संवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुनें, ये गीत और ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राणा ने निशानेबाजी में देश को गौरवान्वित किया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मैक्सिको में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल रात मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित इस विश्व कप में 48 टीमों द्वारा 104 मैच खेले जाएंगे और तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी बी धीरज और कुमकुम मोहद ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमारे हाथों में हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है, मन्ना डे की आवाज़ है, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। साहिल लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत रोशन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। भोपाल से कुसुम ज्योति अर्जुन परी और इनके परिवार ने सुनना चाहा है ये गीत। मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। राकेश और डॉक्टर विनोद ने भोपाल से इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

और अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, मजरूह के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर ने अमलेश्वर से ये गीत सुनना चाहा है। ततरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेंद्र और कुसुम भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और भीमसेन जोशी ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने राजिम से हमें ये गीत सुनने की ख्वाहिश लिख भेजी है। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव का पत्र हमें मिला है। तो आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का ये गीत।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सहरा फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत रामलाल का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है अंतिमा और सोना ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा नगमा, आवाज भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की। कानू रॉय ने संगीत तैयार किया है, फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। पसंद आप सब श्रोताओं की। देवास से मनीष, मृत्युंजय, शिखा और पूनम ने इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीक, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरुड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं इन सब के साथ हम भी गृह प्रवेश फिल्म का ये नगमा।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

गृह प्रवेश फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: ज्ञान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है।

0: सेना।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
3: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब

0: भगवान भी कितना निर्दयी है, खाने पहनने को तो देता नहीं, शरीर को रोगी जरूर बना देता है। हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।
1: नारायणी
0: बोलो,
1: तू ठीक कहती है नारायणी, मैं आभागा तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायणी, तू एक काम कर, मेरा मेरा गला दबा दे नारायणी, मेरा गला दबा दे, ना रहेगा पास और ना पूछेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायणी, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मरकर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। अरे मुझे मुक्ति दे दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भार से।
0: नहीं नहीं नहीं स्वामी नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। पति या पंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायणी
0: ये क्या, मुन्ना रोने लगा, इसे भी अभी उठना था। मैं क्या करूं, मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायणी नारायणी तू जा, तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा, तू जा।
0: कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं?
1: चुप करा लूंगा, तू जा, जा।
0: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है? नहीं नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने आजा, हाँ बेटा मेरी गोद में आजा, आजा। मत रो, मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक ठीक मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये तो और जोर से रोने लगा।
1: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
0: तो मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
0: हाँ पानी पिलाती हूँ, ले ले बेटा पानी पी ले। अरे अरे क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ अब मैं?
2: अरे शिभू, घर में हो क्या?
1: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
1: हो यशवंत भाई, आओ आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
1: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
1: बहुत दे दे मुझे, पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिबू, जब कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
4: यशवंत बाबू, आप किसी काम से आए थे?
3: हाँ बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
4: कौन सी बात?
3: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
4: हड़ताल? यशवंत बाबू, हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
3: अब
4: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
3: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
4: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या, अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
3: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले। देख, इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा, और तब
1: तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू, अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझानी है।
5: अच्छा नारायण, ठीक है।
4: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
6: सुनो भाइयों,
7: सुनो क्या कह रहे
6: हो, मेरी बात ध्यान से सुनो।
7: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका, और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
6: कैसा है डिब्बा? यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
7: किस लिए काका?
6: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ सभी लोग, इस डिब्बे में पैसे डालो।
8: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने है? क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
9: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
6: नहीं भाइयों नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे। हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसानों और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
8: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, है? उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं। अरे ऐसे फिरा, अरे चलो चलो भाइयों, अरे चलो अपने काम पर चलो।
6: अरे ऐसा नहीं है, सुनो
7: मैं।
6: चले गए, सब चले गए।
10: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
6: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
10: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
6: सच?
10: हाँ काका। काका मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
6: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

मजदूर साथियों, मजदूर साथियों, कंपनी को

0: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
1: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
0: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
2: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
0: अच्छा,
2: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
1: अरे वाह। अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? हैं? लिख सकता है क्या?
2: हाँ।
1: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
0: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा है।
1: लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
0: सही कहते हो भैया।
2: बापू।
0: हाँ क्या है?
2: मैं खेलने जाऊं?
0: आ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
2: ठीक है बापू।
0: हाँ। हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिवू। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ घर घराहट है, ना कुछ।
1: हाँ लीचू, ऐसा लगता है जैसे साईं भी चैन की सांस ले रही है।
0: हाँ।
1: शांत और निर्मल साईं, किसी सपने जैसी।
0: सही कहते हो शिवू।
1: ले, भंग हो गई ना साईं की शांति, अब नारों का शोर गूंजा करेगा यहाँ।
0: अरे क्या हुआ? ये तो अपना यशवंत है, इसने तो आज खादी का नया कुर्ता पजामा पहन रखा है। खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से आए इसके पास?
1: अरे यूनियन का चंदा जो जमा हुआ है, उसी से खरीदे होंगे और क्या।
0: अच्छा अच्छा। सही कहते हो भैया।
1: चल हम भी चलते हैं, नहीं तो यशवंत हमें गद्दार समझेगा।
0: हाँ ठीक है ठीक है, चल चल
1: चल।
0: हाँ चल।

0: शाबाश यशवंत शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
1: अरे
0: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
1: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब सब खुशहाल होंगे।
0: तू चिंता मत कर यशवंत, बस बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम थूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
1: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
0: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस बस तुम मजदूरों को संभालो।
1: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
0: हाँ यशवंत एक बात और।
1: क्या?
0: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।
1: हाँ?
0: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
1: लेकिन बलबीर पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था, 10 रुपए हर मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल 40,000 रुपए आए थे। सब इतनी जल्दी खत्म हो गए?
0: देखो शास्त्री जी मजदूरों को उनका हक दिलवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। हजारों झंडे बैनर भी बनवाने पड़े हैं, क्या इन पर कम खर्च आता है?
1: सो तो ठीक है बलबीर, लेकिन तुमने तो कहा था कि पैसा यूनियन के मुख्यालय से आएगा। तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
0: देखो मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
1: हाँ बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
0: देखो तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
1: हाँ समझ गया बलबीर।
2: आराम से।
3: नारायणी, ये तू मुझे कहाँ ले आई?
2: नहा लो ना।
3: नहा लो? पर क्यों? देखो नारायणी, साईं का पानी बहुत ठंडा है, ठंडे पानी से तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। मैं
2: मत करो, जल्दी से नहा लो। जब तक नहाओगे नहीं मैं बात नहीं करूंगी। हाँ
3: अरे कमाल है, ये भला कैसी जिद है नारायण। देख नारायण मुझ पर रहम कर, इस ठंडे पानी से मुझे बहुत थक लग रहा है। हाँ नारायण मैं नहीं, मैं नहीं
2: नहाऊंगा। नहाने से डरते हो?
3: नहीं
2: चलो चलो नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी करो।
3: ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। शुरू बेटा, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में, भगवान भले करेंगे। उतर जा, अरे हो, अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे अरे बहुत ठंडा पानी, बचा, अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है, अरे बचाओ,
2: अरे
1: ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है। नारायणी बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
2: यशवंत बाबू एक महीने से ये नहाए नहीं थे, मारी बदबू के मैं सो नहीं पाती थी, नहलाती नहीं तो और क्या करती।
4: अरे भैया बाबू ये नारायणी की

0: देखो क्या हो गया है।
1: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
0: अरे भैया बामू, गरीब ना होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम ना लगती।
1: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
0: और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अबे देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
2: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
0: सकले भैया बाबू,
2: बेवकूफ कहीं के। नारायणी, इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा।
3: ठीक है।

0: पहुंच गए नारायणी।
1: यशवंत बाबू हाँ? मैं चारपाई बिछाती हूँ।
0: ठीक है।
1: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
0: नारायणी नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
1: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं कर पाती।
0: अब
1: मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार।

0: अरे शिव भैया,
1: लिचू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीव शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिचू भैया, अरे भैया हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। अरे मगर अब तो बदहाल हो गए।
0: शिव भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे।
1: हाँ हाँ लिचू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: लो, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिबू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लड़ने शुरू हो जाएंगे।
1: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।
1: अरे ना, ना, मत बोल ऐसा। अरे मत बोल, भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लीचू, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
0: अरे अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिवू, बदतर जीवन।
1: हाँ लीचू, हाँ मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने, अरे साहब लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक हम है रे, अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
0: अरे क्या, अरे शिबू,
1: अरे सच कहता हूँ मैं। अरे नारायण, अरे तू भाग कर क्यों आ रही है? अरे बोल ना, क्या बात है?
2: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। ये लो 5 रुपए, लीचू के सजाकर दूध ले आओ। मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
1: अरे पर सुन तो सही, तू जा कहाँ रही है?
2: देखो बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है, मुझे साहब के घर वापस जाना है। 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे है, उन्होंने ये रुपए दिए है। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए।

0: बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
1: हाँ हाँ तू जा, मैं देख लूंगा।
2: शिवू शिवू चल उठ, मेरा सहारा ले ले। अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
1: अरे खलासी लंगर, अरे वाह वाह,
2: अरे क्या मजे की बात कही है तूने।
1: अरे बात सुन, देख एक रुपए का तो दूध आ जाएगा, बाकी बचे चार रुपए।
2: अरे चार रुपए में तो शिवु हम दोनों छक जाएंगे।
1: हाँ वाह वाह। अरे अच्छा एक बात तो बता लीजू, क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है?
2: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है, उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
1: ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, सुना है कि वो लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी सड़ाते हैं।
3: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक। शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करता है।
2: साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और कीचड़ सड़ाते हैं।
1: अच्छा।
2: और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते हैं। अरे वाह नीचू भैया, मजा भी तो खूब देती है वो।
3: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
1: अरे, हाँ।
3: अरे सब खेत बिगड़ जाएगा।
2: हाँ, हम दोनों को साथ देखकर वैसे भी लोगों के पेट में दर्द
1: तो
2: होने लगता है।
1: अरे मेरा हाथ तो पकड़, चल चल चल, आ जा आ जा।

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की 7वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल के आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला होगा। और 10वें ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। इंग्लैंड वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रविवार

0: को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडिया वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। दिन का 1 बजा है, लीजिए सुनिए महिला सभा कार्यक्रम।

महिला सभा का आज का अंक लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी सखी संयोगिता जोशी। जी हाँ, आप सभी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारी प्यारी सखियों, आज उम्र के उस खास पड़ाव का जिक्र मैं करने वाली हूँ और बहुत ख़ास है ये पड़ाव, और जिसका अंदाज़ा आपको लगाना है कि मैं किस पड़ाव की बात कर रही हूँ, है ना। बेहतरीन हिस्सा रहा है हमारी ज़िंदगी का ये पड़ाव, है ना। पैसे नहीं होते थे जेब में, लेकिन बराबर दमखम रखते थे हम अपनी बात मनवाने के लिए। धूप की चिंता, न स्वेटर का गम, आम अमरूद की वो टहनियाँ, क्रिकेट बॉल और क्रिकेट के वो गलियारे, जी हाँ, टिफिन की लालसा और बहुत कुछ यादों में सिमट कर रह गया है हमारी, है ना। याद आया आपको वो प्यारा ज़माना, वो दौर जब हम थे प्यारे प्यारे बच्चे। जी हाँ, हमारी परवरिश और आज की परवरिश में कुछ तो अंतर आया है, बहुत अंतर आया है, पर जिम्मेदारी से हम आगे भी बढ़ रहे हैं। परवरिश की जब भी बात होती है ना, तो बचपन में खेलना, खाना पीना, पहनना, पढ़ाई, संबंध बनाना, हम और इन सब चीज़ों पर भरपूर कोशिश करते हैं कि हर स्तर पर आज भी हम अपने माता पिता की तरह खरे उतरें अपने बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों की परवरिश में हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा शामिल होता है, प्यारी प्यारी सखियों, जो दिखाई तो नहीं देता, पर हाँ, समय आने पर हमें इनाम ज़रूर देकर जाता है। तो क्यों ना हमारी अपनी ज़िंदगी की ये छुपी हुई मेहनत और छुपा हुआ सा वो हिस्सा इस तरह का हो कि हर कोई ये कह उठे कि देखो, उनके बच्चे मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना। आप चाहे घर पर रहने वाली हो या ऑफिस पर कार्य करने का दायित्व आप निभा रही हो, अपने बच्चे की परवरिश में कभी भी कोई कमी मत रहने दीजिएगा। इस बात को ज़रूर मानिएगा हमारी, है ना। ज़माने के हिसाब से उन्हें तौर तरीकों की समझाइश आप देती रहें, प्यारी प्यारी सखियों। समय की पाबंदी के महत्व को उन्हें समझाएं, रिश्तों के दायरों में किस तरह से हमें रहना है ये बताएं, मदद कहाँ से लेना है, मदद कैसे और कब करनी है, ये सारी समझाइश आप ना अपने बच्चों को बिना किसी दबाव के देती रहें, प्यारी प्यारी सखियों। हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश बहुत अच्छे खुशनुमा माहौल में होती रहे, ताकि इसके महत्व को हमारे बच्चे भी समझें। मुस्कुराते रहें हमारे बच्चे, हंसते रहें, खेलते रहें, हम सब की ख्वाहिश ऐसी होती है। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है हमारी बहुत अच्छी परवरिश पर निर्भर होता है, है ना। हम यही चाहते हैं कि हमारी एक आवाज़ में हमारे बच्चे दौड़ते, खेल खिलखिलाते, हंसते हमारे पास दौड़े चले आए।

0: कार्यस्थलों पर बच्चों को कार्यकर्ता हम देख पाते हैं। कानूनी तौर पर क्या ये सही है, क्या प्रावधान है बाल श्रम को लेकर? जी हाँ, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बातचीत कर रहे हैं, बाल श्रम कानून और हमारी जिम्मेदारी। सखियो, हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं एडवोकेट कमल कुमार सोनी जी। इस विषय पर हम विस्तार से जानेंगे, बाल श्रम कानून क्या है और हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बाल श्रम कानून क्या है, किस वर्ष इसे लागू किया गया और इसका पूरा नाम क्या है?
1: ये कानून 1996 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम के रूप में संसद द्वारा बनाया गया था
0: जी,
1: जो 26 मई 1987 को पूरे भारत में लागू किया गया है। और वर्तमान में 2016 में इसमें संशोधन हुआ था
0: जी। बिल्कुल, वर्तमान स्थिति में भी बाल श्रम निषेध कानून लागू है। अच्छा, इस कानून के अनुसार बालक किसे माना जाता है, उम्र सीमा कितनी है, कैसे निर्धारित है?
1: बालक की उम्र सीमा 14 वर्ष है। जो 2016 में संशोधन हुआ है उसमें कानून में नाम थोड़ा परिवर्तन हुआ है, बाल एवं किशोर श्रम निषेध नियमन अधिनियम बनाया गया है इस नाम को
0: जी।
1: उसमें बालक और किशोर को परिभाषित किया है
0: जी।
1: बालक मतलब 14 साल से छोटा बालक की श्रेणी में आएगा, 14 साल से 18 जो होएगा बच्चा वो किशोर की श्रेणी में आएगा।
0: उनके लिए कौन कौन से ऐसे काम हैं जो खतरनाक माने गए हैं या हम किसी भी व्यावसायिक स्तर पर उनसे काम नहीं करवा सकते?
1: जो किशोर है उनके लिए खतरनाक स्थलों पर कार्य करने को बाधित किया गया है
0: जी।
1: फैक्ट्री हुई, खदान हुई, होटल हुए, ढाबा है, घरेलू काम है, दुकान है, गैराज है, सर्कस है, ये ऐसी जगह जहाँ पे उनके जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है, उन स्थानों पर प्रतिबंधित किया गया है।
0: बिल्कुल। तो इस कानून के अनुसार बालक हम किसे मान सकते हैं और उनकी जो उम्र सीमा है वो क्या तय की गई है?
1: उम्र सीमा 14 वर्ष है
0: जी।
1: से कम वक्त का कोई भी बच्चा है वो कार्य नहीं कर सकता, उसको कार्यस्थल पर हम नहीं भेज सकते हैं ना कार्य के लिए बाधित कर सकते हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार संशोधन किया है, उसमें कानून का थोड़ा नाम भी चेंज हुआ है, बाल एवं किशोर श्रम निषेध नियमन अधिनियम बनाया गया है, इसको नाम चेंज हो गया है। और इसमें संशोधन ये हुआ कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक है उसमें ये हुआ है कि किसी भी प्रकार कार्य करने के योग्य नहीं है। मतलब उसको 14 वर्ष से कम का कोई बालक किसी भी जगह पर खतरनाक हो या छोटी दुकान पे हो या कहीं पे भी कार्य करना उसको प्रतिबंधित किया गया है। 14 वर्ष से कम का जो बालक है फैक्ट्री, खदान, ढाबा, घरेलू कार्य हुआ, दुकान है, गैराज है, सर्कस है, या जहाँ भी हम देखते हैं छोटी छोटी जगहों पर चाय की दुकान हुई, इस टाइप से कहीं छोटी जगह पे भी अगर वो कार्य करता है तो वो बाधित है, उसे नहीं करना चाहिए ना करवाना चाहिए
0: जी। जी, कानूनी तौर पर ये गलत माना गया है। तो 14 से 18 वर्ष के जो किशोर है, बच्चे है, इस कानून में उन्हें क्या कहा गया है, उनके लिए कौन कौन से ऐसे काम है जो खतरनाक माने गए हैं कानूनी तौर पर?
1: 14 से 18 वर्ष का जो पीरियड है ये किशोर अवस्था कहलाती है
0: जी।
1: 2016 के बाद इसमें किशोर अवस्था को के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक स्थान जैसे पटाखा निर्माण हुआ, फैक्ट्री हुई, माचिस की फैक्ट्री हुई, रासायनिक जहाँ पे केमिकल्स का यूज होता है वहां पर, खदानें जो होती हैं, कई बार माइंस होती है कोयले की या अन्य प्रकार की, रेलवे का हो, इस टाइप जो खतरनाक जहाँ पर उसको जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता है या उसके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे स्थानों पर प्रतिबंधित किया गया है।
0: बिल्कुल, वैसे भी बच्चे तो बहुत मासूम होते हैं, मन और शरीर दोनों से ही कोमल होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किशोरों को इस तरह की जगहों पर काम करने के लिए कानूनी तौर पर बाधित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम करवाता है या वो पकड़ा जाए तो कानून के अनुसार कैसे मतलब प्रतिबंधित है ये?
1: इस कानून के विपरीत कोई व्यक्ति बालक से कार्य कराता है 3 महीने से 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है
0: जी।
1: और जुर्माना 20,000 रुपए से 50,000 तक जुर्माना है
0: जी।
1: इस अगर दोबारा भी गलती करता है तो उसकी सजा जो 3 माह है तो उसको 6 माह हो जाती है
0: जी। जी,
1: उस वर्ष सजा भी जो बढ़ जाती है
0: जी। जी,
1: तो एक बार बार करता है तो उसकी जो फैक्ट्री है उसको सील कर दिया जाता है, नियम विरुद्ध कार्य करने पे प्रतिबंधित किया जा सकता है।
0: तो कोशिश ये की जाए कि जो भी मतलब मालिक है वो मासूम बच्चों से काम ना करवाए।
1: एक उद्देश्य एकमात्र इस कानून का यही है कि अगर आपकी स्वयं की दुकान भी है, माता पिता है उसके, तो भी आप अपने बच्चों से 14 वर्ष से कम का है तो नहीं काम करवा सकते हैं। 16 के बाद परिवर्तन ये आया है कि अपने घर स्वयं के घर की दुकान भी है अगर, लेकिन वहाँ पे कोई केमिकल फैक्ट्री है।

0: मान लो ऐसा कुछ खतरनाक काम है तो वहाँ पे भी उसको प्रतिबंधित किया गया है कुल मिलाकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमारे परिवार में भी हम अपने बच्चों से व्यवसाय
0: कार्य
1: नहीं करवा सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कानूनी तौर पर किशोर होते बच्चों से काम करवाना प्रतिबंधित है, लेकिन कई बार हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, परिवार की आर्थिक स्थिति है, उसके कारण भी बच्चे काम पर जाते हैं, माता पिता भेज देते हैं। अगर कोई बच्चा वहां से छुड़वाया गया है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसके पुनर्वास और पढ़ाई की या उसकी देखरेख की जो व्यवस्था है, तो सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, इसे विस्तार से बताइए।
0: बच्चे को अगर किसी संस्थान से छुड़ाया जाता है
1: जी,
0: तो सरकार उसे एक शेल्टर होम में सुरक्षित रखती है जहाँ पे उसे रहने खाने की पूर्ण व्यवस्था होती है
1: जी।
0: और एक बाल श्रम पुनर्वास कोष भी बनाया गया है जहाँ पे जो भी जुर्माना होता है उसको जमा किया जाता है
1: जी।
0: और बच्चे को मुफ्त पढ़ाई, खाना और भविष्य में उसको क्या कार्य करना है
1: जी,
0: उस समय ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे जागरूक है किसी प्रकार से, उसका उत्साह बनता है कि मेरे को मैकेनिक बनना है या कुछ बनना है, तो सब प्रकार से उसको ट्रेनिंग दी जाती है या उसे जो आईटीआई है या जहाँ भी संस्थान है वहाँ पर उसको शिक्षा के लिए भेजा जाता है
1: जी। किसी साधारण व्यक्ति को कोई बच्चा कहीं से मिलता है तो वो इस पुनर्वास में जाकर छोड़ सकता है
0: जी, जरूर छोड़ सकता है। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वो जो नंबर पे आप शिकायत करेंगे आपका नाम भी आएगा नहीं। चाइल्ड हेल्पलाइन वाले हैं वो संबंधित स्थान पर जाकर बच्चे को रेस्क्यू करेंगे और उस संस्थान जिसके द्वारा बच्चे से कार्य किया करवाया जा रहा है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करेंगे
1: जी।
0: और अगर आपको 1098 याद ना रहे तो पुलिस का 100 नंबर तो सभी को याद रहता है सामान्यतः, तो उस 100 नंबर पे आप शिकायत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, 1098 ये नंबर हम सभी को याद रखना होगा सखियो, बाल श्रम से मुक्ति के लिए। तो 1098 नंबर पर आप संपर्क करके उन बच्चों को पुनर्वास केंद्र तक पहुंचा सकते हैं और उनका भविष्य सुधार भी सकते हैं। सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगी, मान लीजिए कोई व्यक्ति पुनर्वास केंद्र ना पहुंचाना चाहे इन बच्चों को और वो खुद अपनी देखरेख में इन बच्चों को रखना चाहे, तो इसकी क्या व्यवस्था है?
0: बच्चे को सिर्फ माता पिता ही रख सकते हैं
1: जी,
0: और उसके अलावा किसी को ऐसा सौंपा नहीं जाता है
1: जी।
0: या तो वो अनाथ आश्रम जो भी होता है या चाइल्ड वेलफेयर द्वारा जब बनाई गई जो संस्थान होती है वहाँ पर उसको रखा जाता है। और प्रत्येक जिले में CWC होता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है
1: जी।
0: वो अगर चाहे तो शिकायत भी वहाँ कर सकते हैं, तो वही बच्चों की रेस्क्यू करती है, उसको पुनर्वास की पूर्ण व्यवस्था वही करती है और उसे खाना पीना जो भी व्यवस्था है, रहने खाने की सारी पूरी व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है।
1: कहने का ये है कि हम सब जागरूक रहें, अगर कहीं कोई बच्चा ऐसा काम करता दिखता है तो 1098 पे संपर्क करें या पुनर्वास केंद्र में स्वयं भी जाकर वहाँ बच्चे को छोड़ सकते हैं
0: जी, छोड़ सकते।
1: बिल्कुल, है ना। और इस कानून के अनुसार माता पिता या जो अभिभावक होते हैं अपने बच्चे से काम करवाने पर भी उन्हें क्या सजा का प्रावधान है माता पिता के लिए?
0: माता पिता के लिए मैंने भी आपको बताया था कि माता पिता जैसे खुद व्यवसाय में लेकिन उनके बच्चे 14 साल से छोटे हैं, व्यवसायिक रूप से काम करवाते हैं या खतरनाक स्थलों पर ले जाते हैं, मजदूरी करवाते हैं, तो उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है, उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह की कानूनी कार्रवाई से हम सबको बचना है सखियो, और ये संदेश हम सब तक पहुंचाएं कि बाल श्रम अपराध है और मासूम बच्चों को काम करने के लिए नहीं बल्कि उन्हें पढ़ाई लिखाई और उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। कानून ये निर्धारित करता है 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं किसी भी स्थिति में व्यावसायिक स्तरों पर काम करवाना अपराध माना गया है, अपराध की श्रेणी में है, और अगर कहीं ऐसा पाया जाता है तो सजा का प्रावधान भी है। एडवोकेट कमल सोनी जी आप हमारे साथ थे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। बाल श्रम निषेध दिवस पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: सखियो, बाल श्रम कानून और हमारी जिम्मेदारी, एडवोकेट कमल सोनी से ये बातचीत आपने सुनी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मासूम बच्चों का ख़ास ध्यान आप रखती रहें और उन्हें एक अच्छी परवरिश देने की कोशिश करें आपके आसपास के बच्चों को भी। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनवाते हैं आपको एक और बहुत प्यारा सा गीत।

और गीत के बाद बात करते हैं सरकारी योजना की, महिला ई हार्ट योजना। जी हाँ, आप जानते हैं ना कि भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि समाज में महिलाओं की एक सशक्त और बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से पहल लगातार जारी है ताकि महिलाएं आगे बढ़ती रहें। इस उद्देश्य से सरकार ने महिला ई हार्ट योजना लागू की है। सखियों, इसके बारे में अपने कार्यक्रम में हमने कई बार आपको बताया है। जो हमारी उद्यमी सखियां हैं वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और गैर सरकारी संगठनों में अपने हस्त निर्मित उत्पाद बिना किसी बिचौलिए के सीधे बेच सकती हैं इस योजना के माध्यम से, ठीक है ना। इस डिजिटल सशक्त माध्यम से महिलाओं को डिजिटल पहचान भी मिली है, उनकी सेवाएँ और रचनात्मकता जो क्षमता है उसको देश विदेश में पहचान मिलती जा रही है। हस्तशिल्प के अंतर्गत जैविक उत्पाद आते हैं, कपड़ों से बने जो सामान होते हैं, बैग पर्स आदि वो आते हैं, वो सेल कर रही हैं। आवेदन के लिए महिला ई हार्ट वेबसाइट पर आपको जाना होगा और अपनी सेवाओं और उत्पादों को वो अपलोड करके प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सखियों, महिला ई हार्ट योजना से जुड़कर आप अपने हस्त निर्मित उत्पादों को सेल कर सकती हैं और समाज में एक पहचान भी बनाए रख सकती हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल की। जी हाँ सखियो, आप जानती हैं ना कि T20 महिला वर्ल्ड कप सीरीज की घोषणा हो चुकी है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। उनके उत्साह को बढ़ाने का दायित्व सरकार भी खूब अच्छी तरह से निभा रही है। जी हाँ सखियों, इस दायित्व में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और आपको तो पता ही है कि अक्टूबर 2022 में BCCI ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और पुरुष मैचों की जो फीस है और जो वेतनमान है वो बिल्कुल

आन कर दिया है, यानी पुरुष टीम की तरह वेतन पा सकेंगी अब महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी, और फीस भी उनकी बराबर हकदार की होगी महिला क्रिकेटरों की। तो सरकार के 12 सालों की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है हम महिलाओं के लिए। तो बस हम यही चाहते हैं कि महिलाएं ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और अपना नाम रोशन करती रहें। आगे बढ़ने से पहले सुनवाते हैं आपको एक और बहुत प्यारा सा गीत।

तो प्यारी प्यारी सखियों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर हम ये बताना चाहेंगे कि बच्चों की मजबूरी हो सकती है कि वो काम पर जाएं, लेकिन मालिक की कोई मजबूरी नहीं बनती कि वो बच्चों से काम करवाएं। और हर जगह पर हम देखते हैं कि बच्चों के साथ साथ जो मालिक होते हैं वो कार्य करवाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। तो बच्चों की परवरिश पर हम खास ध्यान देते रहें। बात करते हैं एक ऐसे विषय पर, ये जानना भी है ज़रूरी। इससे पहले आपको सुनवाते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत।

सखियो, चलते चलते आपको बता दें कि इस ट्रैफिक चेकिंग पुलिस के दौरान ऐप भी परिवहन ऐप, डिजिटल वाहन दस्तावेज, ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल हैं, ये मान्य होंगे। आप डिजिटली ट्रैफिक के दौरान राह चलते आप ये दे सकती हैं। और निर्देशों के अनुसार ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को ये दस्तावेज स्वीकार करना होगा, पर दस्तावेजों की जो फोटोकॉपी है वो स्क्रीनशॉट के तौर पर मान्य नहीं होगी। तो जानकारी रखिए, जागरूक रहिए और जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाइए। और अब कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म, अगले कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे। चलते चलते आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का था। अब दीजिए अनुमति संयोगिता जोशी को, नमस्कार।

मीडियोवेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश का योग गीत।

अभी आप सुन रहे थे जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत।

0: सोनाली जलोटा के गाए इस गीत के साथ ही आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
4: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
3: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
4: अरे काहे का मजा,
3: क्यों, क्या हुआ?
4: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
3: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
4: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
3: ये हुई ना बात।
5: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
6: RBI कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: इस समय आप है हमारे साथ।
8: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

प्रसारण दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत। बोल अमित खन्ना के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयरहाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित एससीओ सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, एससीओ का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24 लाख रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 प्रश्न से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। NTA ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
2: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। एक महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार और हर बार की तरह हम कोई ना कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल।
0: और खाद, आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, उसमें हम समझ
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ आशा भोसले की है। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया है R.D. बर्मन ने। और पसंद है आप सभी श्रोताओं की छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम और कुसुम नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म त्रिशूल का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की हैं, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। लीजिए सुनिए।

आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से ही दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज सनी। जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल, गोविंद, सालग्राम और दशरथ। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म धनवान का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो, संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर।

रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम खेल जगत में रात 9:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप इस विषय पर प्राची तिवारी की वार्ता।

और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रानू मजूमदार का राग सरस्वती में बांसुरी वादन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में विविध कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं मार्गेशा
1: और मैं अनुभूति स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
0: दोस्तों, आज है शुक्रवार का दिन और आज के दिन बात होती है खेल और विज्ञान की। दोस्तों, खेल जगत में अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और विज्ञान की दुनिया निरंतर विकास के साथ दुनिया को एक नया रूप दे रही है।
1: निरंतर विकास और सबका एक साथ बने रहना ही समाज और मानवता की सबसे बड़ी पूंजी भी है दोस्तों। विकास का अर्थ सिर्फ साइंस से, टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि सोच और विचारों का खुलापन है।
0: ओ, क्या बात है अनुभूति, तुमने एकदम सही बात कही। हम जितने ज़्यादा खुले विचारों और हर किसी की फ्रीडम को बढ़ावा देंगे, हर किसी को अपनाने लगेंगे, तभी असल में समाज में सुधार आएगा और हम विकास की राह पर सही दिशा में आगे भी बढ़ते रहेंगे।
1: और दोस्तों, इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर दिन हम पूछते हैं आपसे दो प्रश्न, तो चलिए आज आपको बता देते हैं कि प्रश्न क्या है।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि पिछला फीफा वर्ल्ड कप जो साल 2022 में आयोजित किया गया था, उस वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन थी।
1: और दूसरा सवाल है कि भारतीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है।
0: दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के जो सही उत्तर है वो हम कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे। तब तक आप इन दोनों सवालों का जो उत्तर है उसे गेस कीजिए और हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

0: विरोधी दिवस मनाया जाता है ताकि बाल श्रम के नकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इसे समाप्त करने के प्रयासों को भी बढ़ावा दिया जा सके।
1: ये दिन उन बच्चों के संघर्षों को सामने लाता है जिन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षित बचपन से वंचित रखा जाता है, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
0: दोस्तों, इस मौके पर तमाम सरकारी और गैर सरकारी मंचों से बच्चों के अधिकारों को लेकर बड़े स्तर पर चर्चाएं होती हैं, साथ ही नई योजनाएं भी सामने रखी जाती हैं ताकि भविष्य की रूपरेखा तय पहले से ही की जा सके।
1: बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2002 में इस दिवस की शुरुआत की ताकि बाल श्रम के मुद्दे को विश्व स्तर पर प्रमुखता दी जा सके और इसे समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिले।
0: कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि चाइल्ड लेबर या बाल श्रम आखिर होता क्या है। दोस्तों, बाल श्रम से तात्पर्य उन कार्यों से है जो बच्चों से उनका बचपन, उनकी शिक्षा, उनका सम्मान और समग्र विकास छीन लेते हैं। इसमें वो कार्य शामिल होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या नैतिक रूप से बच्चों के लिए हानिकारक होते हैं।
1: इस वर्ष विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस का विषय है रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स।
0: ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि किस तरह से बाल श्रम को रोका जा सके और इसके लिए कैसे जो बहुत छोटे छोटे कदम हैं उन्हें उठाया जा सके और सब में जागरूकता बढ़ानी चाहिए, बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित करना है, शिक्षा तक हर बच्चा पहुंच सके इसको भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ और

0: लगा दिया जाता है।
1: इसी के साथ दोस्तों, बाल श्रम बच्चों की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और उस पर बुरा असर डालता है। जैसे इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं तनाव और भावनात्मक आघात, और साथ ही सामाजिक अलगाव, जैसे कि सीमित सामाजिक विकास,
0: सही का अनुभूति, और इसी सब के कारण बाल श्रम को इस दुनिया से पूरी तरह से समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। भविष्य के लिए अनिवार्य है कि आज के दिन से ही बच्चों को पढ़ाई, स्वास्थ्य और उनके विकास की ओर बढ़ावा दिया जाए, ना कि कामों की तरफ। इसी के साथ चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: वैसे साथियों, अगर इन दिनों आप भी रात में सो नहीं रहे हैं और आंखों में फुटबॉल का फीवर चढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल सही जगह आप ट्यून इन कर चुके हैं, क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही मार्गिशा फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं।
1: बिल्कुल अनुभूति। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट का बिगुल बज चुका है, जिसमें कुल 48 टीमें और 104 मैच होने वाले हैं। और पहले ही दिन क्या गजब का रोमांच देखने को मिला है। मैक्सिको सिटी के खचाखच भरे स्टेडियम में पॉप स्टार शकीरा ने अपनी परफॉर्मेंस में ऐसा महफिल लूटी कि पूरा मैदान झूम उठा।
0: मैक्सिको रिकॉर्ड तीसरी बार टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। हाउसफुल स्टेडियम में 16 मिनट और 30 सेकंड की ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हुई दोस्तों, और इस रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी के साथ फुटबॉल इतिहास के सबसे बड़े वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। लेकिन असली जादू तो मैदान पर हुआ। उद्घाटन मुकाबले में मेजबान मैक्सिको ने जीत के साथ शानदार आगाज किया।
1: मैच के हीरो रहे उनके स्टार स्ट्राइकर राउल जिमेनेस, जिन्होंने कभी मैदान पे जानलेवा चोट का सामना किया था, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो असली फाइटर हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरिया रिपब्लिक ने भी अपनी ओपनिंग मैच में बहुत ही धमाकेदार जीत दर्ज की है। पहले ही दिन एक ऐसा बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया दोस्तों। मैक्सिको के सिर्फ 17 साल के युवा खिलाड़ी गिलबर्टो मोरा जैसे ही मैदान पर उतरे, वो विश्व कप के इतिहास में मैक्सिको की तरफ से खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी कंपटीशन अपने अंतिम और रोमांचक मोड़ पर भी दोस्तों, जिस तरह से फुटबॉल वर्ल्ड कप आगे बढ़ेगा हमें देखने को मिलेगा ही। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा ही रिकॉर्ड गवा पेश करने वाला है कि किस तरह से पूरी दुनिया एक साथ आकर फुटबॉल का ये जश्न साथ में मना सकती है।
0: और साथ ही लियोनेल मेसी और रोनाल्डो अपने करियर के छठे वर्ल्ड कप मुकाबले भी खेलने उतरेंगे दोस्तों, तो दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के मन में केवल एक ही सवाल है कि क्या इस मुकाबले में ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना के मेसी और पुर्तगाल के रोनाल्डो की उम्र को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के मंच पर दोनों के बीच भिड़ंत का आखिरी मुकाबला भी ये हो सकता है।
1: वैसे दोस्तों, अगर देखा जाए जो आज सुबह मुकाबला खेला जा रहा था वो था साउथ कोरिया वर्सेस चेक रिपब्लिक, और इस मुकाबले में साउथ कोरिया विजेता साबित हुआ। और अगला जो मुकाबला है वो है कनाडा वर्सेस बोस्निया एंड हर्जोनिया। इन दोनों के बीच ये मैच खेला जाने वाला है और बहुत ही रोमांचक होगा कि कौन जीतेगा।
0: वैसे भारतीय फैंस के लिए भी एक जानकारी ज़रूरी है आप सभी को देना कि अगर आप लाइव मैच देखना चाहते हैं तो ये मुकाबला भारतीय समय अनुसार देर रात और सुबह सुबह प्रसारित होता है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और कुछ चुनिंदा नॉकआउट मैचेस आपको अपने फ्री डिश दूरदर्शन स्पोर्ट्स यानी कि DD स्पोर्ट्स पर भी लाइव देखने को मिल सकते हैं। तो दिल थाम कर बैठिए दोस्तों,
1: क्योंकि फीफा का ये जो फीवर है ये 19 जुलाई तक पूरे शबाब पर रहने वाला है। पल पल के लाइव अपडेट्स, मैच के स्कोर और मजेदार किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही आपको खेल और विज्ञान में हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।

0: क्रिकेट फैंस के लिए एक और बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है मार्गशीर्ष इस महीने।
1: हाँ अनुभूति,
0: 10वीं महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत शुक्रवार को इंग्लैंड और श्रीलंका के मैच के साथ होने जा रही है।
1: ओह,
0: साल 2009 के बाद पहली बार इंग्लैंड महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर रहा है।
1: साथियों, इस बार T20 वर्ल्ड कप की ये जंग और भी रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इंग्लैंड के अलावा मौजूदा चैंपियन न्यूजीलैंड और वनडे वर्ल्ड कप की विजेता भारत भी 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रही है।
0: इस बार T20 वर्ल्ड कप में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमों में 2 ग्रुप बटे हैं और जो मेजबान होने के नाते इंग्लैंड को टूर्नामेंट में डायरेक्ट एंट्री भी मिली है। ICC रैंकिंग के आधार पर टॉप 7 टीम्स हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, जिन्होंने सीधे तौर पर क्वालिफाई कर लिया है। वहीं नेपाल में हुए क्वालिफायर के जरिए बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने भी अपनी जगह बनाई है। नीदरलैंड्स की टीम पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप खेल रही है।
1: दोस्तों, अगर हम टूर्नामेंट के फॉर्मेट की बात करें तो इस बार यहाँ पर ग्रुप में यहाँ राउंड रॉबिन फॉर्मेट लागू होगा, यानी कि ग्रुप की हर टीम एक दूसरे से एक एक मैच खेलेगी। अंत में दोनों ग्रुप की टॉप 2 मिस जो होंगी टीम्स, वो सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेंगी।
0: हालिया फॉर्म की अगर हम बात करें मार्गशीर्ष, तो उसको देखते हुए वैसे तो ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत दावेदार है, पर वहीं भारत ने सबसे ज़्यादा यानी कि 24 मैच खेले हैं और उसमें से 14 जीते हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, साथ ही न्यूजीलैंड भी मजबूत स्थिति में दिख रही है।
1: वैसे देखा जाए अनुभूति, तो ऐसा लग रहा है कि सारी टीमें एकदम एक लेवल पे आ चुकी हैं और इसी कारण से जो मैचेस है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि कंपटीशन एकदम टक्कर का है। इस वर्ल्ड कप में 7 अलग-अलग वेन्यू पर कुल 33 मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड के सभी ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप मैचेस होने जा रहे हैं, जिसमें लंदन का मशहूर द ओवल और लॉर्ड स्टेडियम भी हम देख सकेंगे। 14 जून को हा वेस्टन में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, और आप तो जानते ही हैं कि क्रिकेट के टर्म्स में भारत और पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं।
0: बिल्कुल, ICC ने इस टूर्नामेंट के लिए $8.76 मिलियन, जी हाँ दोस्तों, करीबन कई करोड़ों लगाकर इस जो रिकॉर्ड प्राइस है उसे घोषित किया है दोस्तों। और इसी तरह टूर्नामेंट के बारे में कई सारी ऐसी बातें हैं जो अभी हमने नहीं भी बताई हैं, तो आप अगर हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप वो भी करिए।
1: और इस बार तो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान जाने वाला है इंडिया की जो टीम है, क्योंकि जो इंडियन वुमेन टीम है वो बहुत यंग है, और उसके साथ ही एक्सपीरियंस प्लेयर जैसे कि स्मृति मंदना और ये लोग भी हैं। इसके कारण से जो टीम फॉर्मेट है वो बहुत अच्छा है, डायनामिक बहुत अच्छा है, और क्योंकि वुमेन्स टीम ने हाल ही में जो वनडे वर्ल्ड कप होता है उसे बहुत ही ऐतिहासिक

0: जीत ली थी, तो इस कारण से और भी ज्यादा सबके एक्सपेक्टेशंस हैं, और मुझे लगता है इसके कारण भारत में महिलाओं का जो खेल में भागीदारी है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा ही।
1: बिल्कुल, क्योंकि तो अब इंतजार है भारत की महिला T20 वर्ल्ड कप के उन सभी खिलाड़ियों का जो विदेश जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप जीतने और एक बहुत ही बेहतर खेल का प्रदर्शन करने।
0: जी,

0: दोस्तों, अब बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और आज की तारीख में हम जब भी साइंस या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सबकी के दिमाग में आता है AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डिजिटल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। ये केवल एक तकनीक नहीं रह गई दोस्तों, बल्कि ये एक आर्थिक विकास और जीवन शैली का नया इंजन बन गई है।
1: बिल्कुल, ये डेटा विश्लेषण, ऑटोमेशन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक बना रही है। AI केवल एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति है।
0: बिल्कुल सही कहा अनुभूति। और देखा जाए तो AI कंज्यूमर बिहेवियर का रियल टाइम विश्लेषण, यानी कि उसको एनालाइज करता है और रिकमेंडेशंस भी उसी के हिसाब से देता है। इसलिए आप जब भी कुछ सर्च करते हैं, आपको अगले ही दिन या कुछ ही मिनट्स में उसकी एड्स अचानक अपने आप आने लगती हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। और इसमें कहीं ना कहीं AI के रियल टाइम एनालिसिस का हाथ है।
1: बिल्कुल, चिकित्सा के क्षेत्र में भी AI डायग्नोसिस सटीकता में सुधार कर रहा है, जो रेडियोलॉजी और जटिल बीमारियों की पहचान में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।
0: इसी के साथ दोस्तों, AI अब सिर्फ जेनरेटिव AI के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक एजेंटिक AI के रूप में भी इसको स्वीकारा जा रहा है। और ITOps जैसे कार्यक्रम भी AI अब बहुत ही सटीकता से कर पा रहा है।
1: भारत में इस डिजिटल AI क्रांति का प्रभाव शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। साथियों, सरकारी नीतियों के सहयोग से भारत खुद को एक वैश्विक AI पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: यानी कि दोस्तों, ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि आने वाली जो जनरेशन है और जो अब जॉब्स का मार्केट है, उसमें AI एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और इसलिए क्योंकि AI से कहीं ना कहीं हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सटीकता से होता है। इसलिए आज आप जब भी किसी कंपनी में अप्लाई करने जाएंगे और आपके रेज्यूमे में अगर AI का मेंशन है, या आप किसी भी AI सॉफ्टवेयर या टूल को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते हैं, तो आपको हमेशा इंटरव्यूज़ और जॉब प्लेसमेंट्स में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसलिए अगर आप एक युवा हैं जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको भी AI टूल सीख लेने चाहिए, है ना अनुभूति?
1: बिल्कुल मार्केशा। और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल एग्रीकल्चर में कितना काम आ रहा है, एजुकेशन में कितना काम आ रहा है। मतलब हम देखें कि विलेजेस में, गांव-गांव में, शहरों में नहीं लेकिन गांव में भी किसान ये AI का बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे कई तरह से काम आ रहा है। मेरे ख्याल से हम अगर ऐसा कहें कि हमारी एक डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है AI, तो ये गलत नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा अनुभूति कि AI एक हमारे रूटीन का पार्ट बन चुका है, लेकिन AI एक ही चीज़ में शायद पीछे रह सकता है, वो है इमोशंस और क्रिएटिविटी। ये तो सिर्फ ह्यूमन माइंड ही सबसे अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी या आर्ट में हमें चाहिए होते हैं ह्यूमन इमोशंस, जो AI नहीं ला सकता। तो दोस्तों, आप भी अगर युवा हैं और हमें सुन रहे हैं, तो आप भी आज ही AI टूल सीखना शुरू कर दीजिए और अपने रेज्यूमे को स्ट्रांग बनाइए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: तो दोस्तों आज के कार्यक्रम के लिए इतना ही। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा।
1: अब वक्त है आपको जो हमने दो प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर देने का। पहला प्रश्न था कि 2022 में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था, तो इसका उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने आखिरी मैच में फ्रांस को 4-2 से हरा कर ये खिताब अपने नाम किया था।
0: और दूसरा सवाल था कि भारतीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं मैं हूं ना फिल्म का गीत। स्वर हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल के, रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है अनु मलिक का।

दिल चाहता है। इस फिल्म का गीत सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में, बोल है जावेद अख्तर के और धुन है शंकर एहसान लॉय की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत प्रस्तुत है फिल्म सुल्तान से। स्वर है राहत फतेह अली खान की, रचना है इरशाद कामिल की और धुन है विशाल शेखर की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
3: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
3: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
3: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
3: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
3: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
3: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
3: ऐतिहासिक और आनुवांशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में

0: में यह पहली बार पाया गया।
1: जी
0: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
1: यहाँ से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुँचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुँचा।
0: श्रोताओं, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
1: जी।
0: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अभी एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CITNCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं मन्ना डे।

अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे के स्वर में भजन। सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में आज हमारी कलाकार हैं ममता शर्मा और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं इनके स्वर में ये मालवी लोकगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है लोक संगीत और आज हमारी कलाकार हैं ममता शर्मा और उनके साथी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में ये मालवी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे ममता शर्मा और साथियों के स्वर में मालवी लोकगीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
0: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। आज की सभा के मुख्य कार्यक्रम है 7:20 पर कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। दिल ने फिर याद किया सुनिएगा 8:00। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन होगा 9:30 पर। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुन सकेंगे वायलिन वादन पंडित वीजी जोग का। राग होगा श्याम कल्याण। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम।

0: कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं। वंदना सुनिएगा सुबह 6:05 पर, चिंतन सुन सकेंगे सुबह 6:30 पर, खेती की बातें सुनिएगा सुबह 6:35 पर, सदाबहार फिल्मी संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा 7:20 पर, फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगे गीता पराग और उनके साथी। कार्यक्रम होगा सुबह 9:00 और शाम 6:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा रूप कुमार राठौर को सुबह 9:15 पर और शाम 6:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग होगा तोड़ी। कार्यक्रम होगा 9:23 पर। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन सुनिएगा 10:05 पर। फोन करें गीत सुने फोन इन कार्यक्रम होगा भोपाल से 11:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 12:00 और 2:00। संग्रहालय से ये कार्यक्रम भोपाल से रिले किया जाएगा 12:30 पर। महिला कार्यक्रम होगा भोपाल केंद्र से 1:00। 1:30 पर सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा। भोपाल से ही सुनिएगा सुगम संगीत का कार्यक्रम 1:45 पर। चित्रपट संगीत भोपाल से रिले किया जाएगा 2:30 पर। शाम 5:00 सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा 5:45 पर। शाम 6:00 सुनिएगा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। कार्यक्रम के अंतर्गत सुन सकेंगे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। 7:20 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती गृहस्थी। दिल ने फिर याद किया ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर और राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका दिल्ली से रिले होगा 9:30 पर। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली से रिले होगा रात 10:00। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6:00।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की।

0: बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्यप्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से श्योपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मॉनसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी की चौपाल पर आयला सभी भाई बहनों की तृप्ति की राम राम। भाई बहनों, आज अपन लोकगीत का आनंद का साथ में वार्ता सुनांगा कि जैविक खाद निर्माण कसो करा अने एको उपयोग कसो करा अने जानकारी देगा अपना का प्रगतिशील कृषक दीपक जाट। तो सबसे पहला अपन बात करें कि आज अपन कई बात करने वाला छे। तो भाई बहनों, अपन का फसल तब अच्छी मिलेगा जब वो बीज अच्छे हो, न कभी जमीन अच्छी हो, पानी अच्छे हो, न बीज कभी खराब निकली जाए तो कई मतलब ऐसी अच्छी जमीन को न पानी को। तो या सारी समस्या न हमारा मुक्ता किसान भाई सामनो करज अने ओको उपाय कई छे, ओको उपाय छे हमारी राष्ट्रीय उच्च उपज देने वाला बीज नको मिशन। हाँ भाई बहनों, भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए एक मिशन चलायो जेका अंतर्गत वो ऐसा बीज उपलब्ध करावत जो जलवायु का अनुकूल होए, कीड़ा न का प्रतिरोधक होए, नई किस्म होए, ज़्यादा उपज देने वाला होए, आसानी से उपलब्ध होए। तो ऐसी जो चीज़ छे एका लिए मुख्य उद्देश्य उनको यो छे कि भारत में खाद्य सुरक्षा या खाद्य उत्पादन का बढ़ाने का लिए, पारंपरिक फसल न का नया तरीका से उगाने का लिए, अने बीज न की जो गुणवत्ता छे ओका साथ में जैव विविधता का रक्षण का लिए न ओका बढ़ाने का लिए ऐसा बीज न को निर्माण किया जाए जेका से कि राष्ट्र को जो खाद्य संकट छे वो सदा का लिए खत्म हो जाए। तो एका में करांच कई अपन इना जो हमारा मिशन छे ओका अंदर हम कई करां ऐसा बीज विकसित करां जो बदलता तापमान, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को सामनो करी सक। साथ साथ इना बीज का अंदर एक अलग क्षमता डाली जाए जेके कहवा अपन रोग अन्न कीड़ा न से प्रतिरोधक क्षमता। तो भाई बहनों, यो सब कसो होएगा तो हमारा कृषि वैज्ञानिक समय समय पर बीज न का संकर बीज बनावज, उनका अंदर नया प्रकार का जीन न कर डालज जेका से गुणवत्ता बढ़ज साथ साथ उत्पादन भी बढ़ज। अब नई किस्म ने लगभग हमारा देश में हमारा किसान भाई न का लिए हमारा कृषि वैज्ञानिक ने न 100 से ज़्यादा नई बीज न का किस्म डालीज जेका में अनाज भी छे, दलहन भी छे, तिलहन भी छे, न मुक्ति जो छे हमारी सब्जी न का फल का बीज भी छे जेका से कही होगा कि उत्पादन जो छे अपनों वो बढ़ेगा बढ़ेगा साथ साथ जितो बीज लगायो जेने जितनी लागत करी उतनी ज अपना का उपज भी मिलेगा। यो सब संभव छे तबज जब हमारा किसान भाई जागरूक रहेगा, अपना पास का जो कृषि विज्ञान केंद्र छे वहाँ पर जो नया प्रजाति का नया प्रकार का जो बीज उपलब्ध छे अपना किसान भाई न का लिए हमारा वैज्ञानिक न का पास ओका लेगा, समय समय पर अगर कई समस्या आ रही ओका निदान का लिए कई करेगा कृषि विज्ञान केंद्र से सहायता लेगा, तब जाकर कई इन्हीं योजना को इन्हीं मिशन को अपना का पूरा उद्देश्य प्राप्त होएगा। तो सीधी सी बात है कि जानकार रहा अपन न हमेशा जो छे अपन आगे रही का काम करा, ऐसा कहा नहीं गाय दूध दे लेकिन धोणू आनू चाहिए, सरकार मदद करे लेकिन योजना की जानकारी होनी चाहिए, अने योजना की जानकारी अपना का लगातार काम इलाज भाई बहनों अपनी चौपाल पर। तो एक जानकारी अरु हूँ दूंगा यहाँ पर कि खाद लगावा अगर अपन अपना खेत में तो जैविक खाद होनी चाहिए, है नी? जैविक खाद को महत्व कहे छे यो हम बोली कर तो कभी नहीं बताऊंगा। तो भाई बहन पूछ रहा है कसी बताएगा बहन तू? तो अपन सुनांगा नारायण लाल सिसोदिया को गायलो ये लोकगीत जेका मोन ने बताया जैविक खेती कीजिए किसान भाई। तो सुनाजे लोकगीत ने समझा या बात।

0: ભાઈ બહેન નોન, આનંદ આવી ગયો નારાયણલાલ સિસોદિયા કો ગાયેલો લોકગીત સુણી કો અને જૈવિક ખેતી કો મહત્વ ભી સમજમાં આવી ગયો. પણ એક વાત છે કે આપણા ખેત કી મટ્ટી કી જબ તક આપણા કા પહેચાણ નહીં હોય આપણ આપણા ખેતમાં કઈ છે કઈ નહીં હૈ એક પહેચાણી નહીં સકતા. તો એકાલી કઈ કરવું ચાહીએ કે આપણા કા સમય સમય પર મતલબ એક દ્વિ સાલમાં આપણા કા આપણા ખેત કો મટ્ટી પરીક્ષણ જરૂર કરવાનું ચાહીએ. આ મટ્ટી કો પરીક્ષણ કસો કરવાનું ચાહીએ, અસો નહીં કે એક જગ્યા થી મટ્ટી ઉઠાઈ કે લઈ ગયા અને કહ્યું કે ભાઈ કઈ બતાવી દો અમારા મટ્ટીમાં કઈ તત્વ કી કમી છે ને કઈ છે કઈ નહીં કાકી ફસલ ઉગાવવા. આપણા ખેત કા અગર ચાર જગ્યા છે તો ચાર કોના નસે ચારી દિશા નસે આપણા કા મટ્ટી ઉઠાવણું જ લગભગ છ છ ઇંચ કી ગડ્ઢા કા અંદર સે, તાકી ઓકા અંદર કાં કાં કીટાણુ જીવાણુ છે ને કાં કાં તત્વ છે એ સહી તરીકા સે આપણા કા માલુમ પડે અને સબકા એકઠો કરી કને ફિર આપણા કા દેણું જ મટ્ટી પરીક્ષણ કા લીએ, તો જ આપણા કા સહી જાણકારી મિલગ. જાણકારી આપણા કા એ કરું જગત સે મિલ જ વો છે આપણી ચોપાલ. ને સબ લોગ રસ્તો દેખી રહ્યા હોય કે બહેન તુમ બતાવણ વાળી થી કે જૈવિક ખાદ નિર્માણ કઈ હોય કસો કરા અને ઓકો ઉપયોગ કઈ છે. હા તો ભાઈ બહેનો અવો આપણ સુણાંગાયા વાર્તા જે કામ પ્રગતિશીલ કૃષક દીપક જાટ ગ્રામ માચકંદા છે આપણા કહીએ બતાવી રહ્યા છે કે જૈવિક ખાદ નિર્માણ કસો કરાં અને ઓકો ઉપયોગ કસો કરાં. તો સુણાંગાયા વાર્તા.
1: કિસાન ભાઈઓ નમસ્કાર, મેરા નામ દીપક જાટ હે, મેં ગ્રામ માચકદા ડિસ્ટ્રિક્ટ ધાર કા રહેને વાલા હું. આજ હમ જાનેંગે જૈવિક ખેતી કો કેસે કિયા જાતા ઓર જૈવિક ખેતી સે કેસે હમ ઉત્પાદન લે સકતે હો. रासायनिक खेती से जितना उत्पन्न होता है उतना ही हम जैविक खेती से उत्पादन कर सकते हैं. किसान भाइयों, एक तो हमारा एक कि गोबर की खाद डालने का तरीका थोड़ा सा अलग है. गोबर की खाद को सही तरीके से डालकर हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं. गांव में क्या करते हैं कि गोबर की खाद को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक साल रहता है वो, दो साल रहता है, तीन चार चार पांच साल ऐसे कंटिन्यू वहां रखा रहता है. उसके बाद वो खेत गोबर को डालते हैं क्योंकि वहां पे जो गोबर रहता है वो सूख जाता है और गोबर सूख जाएगा तो उसमें जीवाणु वगैरह सारी चीज क्या होगी, मर जाएगी. गोबर की खाद को डालने का सबसे सही तरीका है गीला. गोबर की खाद को हमेशा गीला डालना चाहिए. यदि गोबर की खाद को आप गीला डालोगे तो ज्यादा से ज्यादा पौधों को लगेगा. गोबर की खाद को गीला डालना ही चाहिए क्योंकि वही सही तरीका सही है. तो गोबर की खाद को गीला अपन कैसे करके डालता है उसकी भी एक विधि होती है. कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से अपने को गोबर की खाद को डालना चाहिए वो तरीका मैं आपको आज बताऊंगा कि अपन गोबर की खाद को कैसे डाल सकते हैं खेत में और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, ये बहुत जरूरी है. मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक बीघे में या एक एकड़ में या एक हेक्टेयर में हमें कितना गोबर डालना चाहिए उतना ही गोबर अपने को डालना चाहिए. और वो कैसे डालना चाहिए ये विधि मैं आपको आज बताऊंगा. तो आप लिख लीजिए, आप गांव में जाइए अपने खेत, बहुत सारे किसान लोग हैं तो उसको उसी प्रकार से ही आपको गोबर की खाद को डालना और कितना डालना है. किसान भाइयों, एक एकड़ में गोबर की खाद डालने के लिए, एक एकड़ का मतलब होता है डेढ़ बीघा या पौने दो बीघा, एक एकड़ का मतलब ये होता. तो एक एकड़ में अपने को गीला गोबर कितना डालना चाहिए या हेक्टेयर, एक हेक्टेयर मतलब चार बीघे के समथिंग होता है. तो अपन बात करते हैं एक एकड़ की. एक एकड़ में गीला गोबर कम से कम 10 से 15 किलो हमें डालना चाहिए, उतना गोबर पर्याप्त होता है. किसान भाइयों, आप बोलोगे कि हम 10 से 15 किलो गोबर ही क्यों डालें, 100 किलो क्यों नहीं. 100 किलो इसलिए कि 10 किलो गोबर पर्याप्त होता है. मैं बताता हूं आपको 10 किलो गोबर से, 10 से 15 किलो गोबर से आप कैसे उसको कर सकते हैं. सबसे पहले करना क्या है, हमें गाय का गोबर लेना है 10 से 15 किलो, 10 से 15 किलो गोबर लेना, उसी में 10 से 15 किलो गोमूत्र लेना है. यदि गाय का गोबर लेते हो तो आपको गाय का मूत्र लेना है, भैंस का गोबर लेते हो आप तो भैंस का मूत्र लेना है, और यदि आप बैल का गोबर लेते हो तो बैल का मूत्र लेना, मतलब जिस पशु का गोबर लेते हो आप उसी का मूत्र हमें को लेना है. किसान भाई, अब आप बोलोगे कि हम गोबर तो इकट्ठा कर लेंगे लेकिन मूत्र को कैसे इकट्ठा कर. तो आपका एक तरीका मूत्र को इकट्ठा करने के लिए, एक तो आप पक्की नाली बनाइए, उसको पत्थर रख के पक्की नाली बना लिए. नाली बनाने के बाद आप उसको जो नाली खत्म होती है वहां पे गड्ढा खोद लीजिए, गड्ढे में प्लास्टिक लगा दीजिए या कुछ भी ऐसा कर दीजिए जहां पे मूत्र इकट्ठा हो जाए. तो ऐसे वहां पे मूत्र इकट्ठा हो जाएगा आसानी से, 10 किलो गोबर और 10 किलो मूत्र आपका आराम से इकट्ठा हो जाएगा उसमें. तो किसान भाइयों, गाय का जो गोमूत्र होता है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, उसको आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक भी आप स्टोरेज करके रख सकते, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अब हमने गौमूत्र 10 किलो और 10 किलो गोबर ले लिया, इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें कम से कम 1 किलो गुड़ मिलाना है। गुड़ 3 प्रकार के, एक तो हम खाते है वो गुड़ होता है, एक पशु खाते वो गुड़ होता है, एक गुड़ होता है वो काला जो किसी काम का नहीं होता, वो जो काला गुड़ रहता है ना वो गुड़ हमें को उसी में 10 किलो गौमूत्र और जो तैयार किया है हमने घोल उसके अंदर उस 1 किलो गुड़ को हमें डालना है, 1 ही किलो गुड़ को उसमें डालना है। इस घोल में हमने डाल दिया है गौमूत्र, गोबर और गुड़ ले लिया। अब इसके अलावा हमें इसमें 1 किलो दाल डालना है। दाल आप कुछ अरहर की दाल ले लो, चने की दाल ले लो, मूंग की दाल ले लो, मसूर कोई भी दाल ले लो, आप जो प्रकार की दाल हो उसका आटा 1 किलो इसके अंदर हमें डालना। अब इसमें हमने 4 चीजें डाल दी, गुड़ डाल दिया हमने, गौमूत्र डाल दिया और गोबर डाल दिया और चने की दाल। अब इसके अंदर हमें डालना है 1/2 किलो या 1 किलो मिट्टी डालना है। वो मिट्टी हमें कहाँ से लेनी है, पीपल का पेड़ बरगद के पेड़ के नीचे से हमें मिट्टी लेना। वहां से ही क्यों मिट्टी लेना, वहां से मिट्टी लेना इसलिए जरूरी क्योंकि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ हमेशा सुबह शाम रात को हमेशा ऑक्सीजन देते हैं और जो पौधे ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं उनके पेड़ के पास जीवाणु की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बरगद और पेड़ जो ऑक्सीजन देते हैं उनके अंदर जीवाणु की संख्या ज्यादा और वो जीवाणु खेत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब किसान भाई हमारे पास हो गया घोल, हो गया 5 चीजें हो गई इसके अंदर, एक तो गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया और दाल का ये हो गया और मिट्टी हो गई। अब इस चीज को हाथ से आप घोल सकते हो या फिर डंडे से घोल के एक ड्रम में रखो, इसको हमें प्लास्टिक के ड्रम में रखना है ना कि लोहे के ड्रम में रखना है। अब इस घोल जो हमने तैयार किया उसको हमने को 15 दिन रख देना है। इसमें अगर घोल अगर थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो गाढ़ा लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा सा पानी मिलाना, तो ये 15 दिन के लिए रख देना। तो 15 दिन के बाद आप देखोगे बहुत सारे जीवाणु, करोड़ों जीवाणु इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये जीवाणु को रखने के लिए हमें सबसे पहले एक तो ढक के रखना चाहिए या फिर पेड़ की छांव के नीचे भी रख सकते हो। तो ये घोल आपका 15 दिन में आपका घोल तैयार हो जाएगा। अब किसान भाई इस घोल को खेत में छिड़कने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जितना अपना घोल है जैसे 10 किलो घोल है तो इसको 10 गुना पानी मिलाना चाहिए। जैसे 10 किलो अपना घोल बना तो उसको 100 लीटर पानी मिला या फिर इससे भी ज्यादा मिला सकते हो तो 200 लीटर पानी मिला सकते हो, 100 से 200 लीटर आप पानी मिला सकते हो इस घोल को। फिर हमें को 1 एकड़ खेत में छिड़कना है तो पानी छिड़कते हैं ऐसा, इसको पूरे एकड़ खेत में हमें को छिड़क देना चाहिए। तो ये जो जीवाणु रहेंगे मिट्टी में चले जाएंगे और मिट्टी में उसमें अलग तरीके से काम करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी में क्या काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये मिट्टी जीवाणु मिट्टी में जाके क्या काम करते हैं। पौधों में अगर नाइट्रोजन चाहिए तो ये जीवाणु उसको पूर्ति करते हैं, यदि फास्फोरस चाहिए तो फास्फोरस दिलाते हैं, कैल्शियम चाहिए तो ये कैल्शियम दिलाते हैं, पोटाश चाहिए तो पोटाश दिलाते हैं ये जीवाणु। और वही पौधों को और पूरे के पूरे 18 से 17 पोषक तत्व है वो पूरे मिल जाएंगे और पौधे की ग्रोथ हरा भरा बहुत ही अच्छी तरह से होने लगेगा। जिस पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व मिलेगी तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसमें फल भी अच्छा लगेगा और जो फल लगेगा वो पूरे पोषक तत्व से भरा होगा, 17 पोषक तत्व से बना होगा फल हो। वही फल हम खाएंगे तो वही पोषक तत्व हमारे शरीर को मिलेंगे, न्यूट्रिशन पूरा 17 पोषक तत्व अपने शरीर को मिलेगा। अब इस घोल को खेत में कैसे डालना चाहिए और कब डालना, सबसे अच्छा तरीका बोनी के पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय

डालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जैसे अभी आप समझते हैं, अभी जो आने वाला खरीफ का सीजन है, हम जो भी फसल बोते हैं जैसे कपास हुआ, मक्का हुआ, सोयाबीन हुआ, जो फसल उनकी जो तैयारी करेंगे उसी टाइम में इसको डालना सबसे अच्छा होता है। पहली बार हमने जब मिट्टी की जुताई की तब डाल दिया, अगला जब हम कब डालना चाहिए, अगला डालना चाहिए हम 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद क्यों डालना चाहिए, क्योंकि 21 दिन तक जब पौधा ग्रोथ करता है तो जमीन में पोषक तत्वों से ग्रोथ करता है, लेकिन 21 दिन बाद वो प्रकाश से या सूर्य की रोशनी, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोले, उससे ग्रोथ करता है वो। तो आप समझ लीजिए कि हमें हर 21 दिन में इसको डालना है, जब भी 21 दिन होता है हर 21 दिन में हमें पौधों को ये डालना है। अब इसको 21 दिन में डालते हैं, जैसे कोई फसल की आयु के ऊपर, जैसे कोई फसल 4 महीने की है तो उसको बाद 3 बार डालना पड़ेगा, 6 महीने की फसल है तो उसको 7-8 बार डालना पड़ेगा, 10 महीने की, 8 महीने की फसल है तो 7-8 बार अपने को डालना पड़ेगा। अब इसमें खर्चा क्या है, जैसे घर के पशु है तो कोई खर्चा नहीं है इसमें, यदि घर के पशु है तो हमारा गोबर फ्री का हो गया, गौमूत्र फ्री का हो गया, सड़ा पड़ा गुड़ वो फ्री का हो, अगर दाल रे बाजरा अगर घर पे ही पैदा होती तो वो भी फ्री, कुल मिला के खर्चा जीरो, थोड़ी सी मेहनत जो, लेकिन पूंजी का कोई खर्च नहीं है इस खाद को बनाने के लिए। तो ये जो घोल है इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो और सूक्ष्म पोषक, जैसे नाइट्रोजन है इसमें, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, बोरान है, सिलिकॉन है, जिंक है, आयरन है, जो पोषक तत्व हमें चाहिए वो भरपूर मात्रा में पौधों को भी चाहिए, और इसी में सारे पोषक तत्व है। इसी प्रकार रासायनिक खादों में सारे पोषक तत्व नहीं होते, रासायनिक खादों में 1 पोषक तत्व, 2 पोषक तत्व, खूब से खूब 3 पोषक तत्व होते, इससे ज्यादा पोषक तत्व नहीं मिले, लेकिन गोबर की खाद जो हमारा घोल बनाया हो उसमें पूरे के पूरे 18 पोषक तत्व होते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें सारे पोषक तत्व होते तो जो पौधों को लगते हैं वो सारे पोषक तत्व उसके फल में भी आते हैं, और जो फल हम खाते हैं उसी के सारे पोषक तत्व हमें पूरे के पूरे हमें मिल जाए। तो किसान भाइयों, हमें हर 21 दिन में ये डाल। अब कुछ किसान भाई सोचे होंगे कि पहले 21 दिन में डालते हैं उसका रिजल्ट कम आएगा, थोड़ा आएगा, लेकिन धीरे धीरे वो आपको समझ में आ जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले साल जब आप इसका मिट्टी को डालेंगे, गोबर खाद को मिट्टी में डालेंगे तो खराब से खराब जमीन में भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते, रासायनिक खाद के बराबर इसका उत्पादन आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, इसका कोई खर्च नहीं है, सारी चीज हमें फ्री की मिल रही है। रासायनिक खाद को आप महंगे से महंगे ला के डालोगे तो उसका खर्चा, इसका खर्चा देखोगे तो बहुत फर्क है दिखेगा, आपका खर्चा कम होगा लेकिन उसके साथ साथ में उत्पादन भी आपको मिलेगा उसका भरपूर। तो 1 या 2 साल 3 साल तक अगर आप यूज करोगे तो बेहतरीन उत्पादन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिलेगा आपको, और इसकी लागत कम होगी। चाहिए एक तो ये फायदा ये होगा कि हमारी जो जमीन है वो काफी बंजर होती जा रही रासायनिक खादों के उपयोग से, लेकिन जैविक खाद से बंजर नहीं होगी, क्वालिटी सुधरेगी जमीन के, जो पोषक तत्व खत्म हो गए वो वापस उसमें आ जाएंगे। रासायनिक खाद आप डाल रहे हो तो 2 से 3, 3 से 4 पोषक तत्व ज्यादा आप नहीं डालते, लेकिन जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट या माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व कंटिन्यू पौधे तो लेते ही है ना, तो हम काफी समय से खेती कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा अपना पोषक तत्व निकलता जा रहा है माइक्रो, लेकिन जो निकल रहा है उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास रासायनिक खाद नहीं है इतने कि हम सारे 17 पोषक तत्वों की पूर्ति कर पाए, इसलिए हमें गोबर की खाद का उपयोग करना जो ही यही जैविक खेती है।

तो भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था प्रगतिशील कृषक दीपक जाटक, जो कि ग्राम माचकदा जिलाधार से था। इन्हें अपना बड़ी अच्छी जानकारी दी कि जैविक खाद को निर्माण कसो कराएं या नौको उपयोग कसो कराएं। अब देखो भाई बहनों, जब अपन सब काम सही तरीका से करा तो अपना पर कृपा भी आई जावे। न कृपा भगवान की होए तो खूब अच्छो, न कदी माए लक्ष्मी की होए तो और भी मजा आई जाए। क्योंकि आज छे शुक्रवार, तो आज अपन माता लक्ष्मी का मने लेवान संध्या सुजालपुरकर का गायला इना लोकगीत का माध्यम से। तो सुना जो लोकगीत ने समझान या बात।

भाई बहनों, अभी अपन सुनी रहा था संध्या सुजालपुरकर को गायलो लोकगीत अन बड़े आनंद भी आयो, क्योंकि अपनी जो बोली न हो उनकी मिठास जितनी है कि कई को भी लोकगीत सुनो आनंद भी आवा जाना समझ में भी आई जावज। तो जहाँ समझने की बात कर रहे हैं तो ये करूँ बात हो समझाऊंगा कि अभी बरसात का मौसम लगनोज वालों छे, पानी कभी धड़धड़ आएगा तो कभी फुहार ना आएगा, यो पानी मुक्ति बार वही का निकली जाए अपना खेत न पसे रोड न पसे, तो इना पानी का अपना का बचावनू चाहिए। अब इना पानी का बचाने का लिए अपन अपना किसान भाई खेत न में जल संचयन कसो कर आज अपन एक आप भी बात करें जरा सी। तो अपना का खेत में एक लिए अपना खेत में कई करना पड़ेगा, एक अकेलो किसान एक खेत में काम करे तो कई बात नहीं बनेगा, सभी का मिली का काम करना चाहिए और सभी ने एक साथ मिली का अपना खेत न में मेड़ लगाना चाहिए, मेड़ बांधना चाहिए, खेत की तलाई जो रहे जहाँ ढलान हुए वहाँ गड्ढो करना चाहिए जैसे पानी जो छे गड्ढा में

चली जाए। थारो खेत ने मारो खेत नहीं करना चाहिए। पानी को संचयन अगर जमीन का अंदर होएगा तो दुई का खेत में बराबर जाएगा। अगर ढलान दुई का खेत न का बीच में है तो दुई ने मिली कर गड्ढो करना चाहिए ताकि पानी को संचय हो सके। साथ साथ अपना का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो खेत का जहाँ ढलान को हिस्सों छे जहाँ पर मट्टी भी वही के चली जाए वहाँ पर कंटूर बनाना चाहिए। मतलब वहाँ पर ऐसी आड़ी आड़ी नाली न बनानी चाहिए जैसा से कि पानी वही कर नहीं जाएगा न मट्टी भी वही कर नहीं जाएगा न पानी रुकी जाएगा किनारा पर। साथ साथ अपना का एक और चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि आपसी सहयोग से बड़ा बड़ा जो निर्णय लिया जाए ना बड़ा बड़ा युद्ध जीती लेवा तो जल संकट जैसा युद्ध का अपन जीती सकें आपसी सहयोग से। करनू कहे छे कि भाई खेत न जाई कर अपना कहीं पानी वही रहो है तो कि मेड़ बांधने का काम एक अकेला किसान पर नहीं छोड़नु है। सामुदायिक पूरा गांव में इन्हीं बात की अपना के चर्चा करनी चाहिए कि भाई थारा खेत में ढलान छे तो अपन वहाँ पर तालाब बनाए लेवा सभी मिली का खोदान गड्ढो मजदूरी काय का कोई कर देवा। अपन सब इतना मजबूत किसान छे तो अपन तलाई बनाई सकान जरा जरा सा अपना जो गड्ढा छे उनको खोदी कर उनकी गहराई का आसपास बागल लगे दो कहीं कोई जानवर भी ओका मनी गिरा। अगर अपन मिली का काम करांगा तो अपना जो गांव छे उनमें जो जल संकट आई रहे जेका कारण कि वहाँ का युवा न वहाँ का लोग भागी भागी का शहर न आई जावज वो महान रहेगा और खेती में सहायता मिलेगा। सही बात है कि नहीं? देखो बात न तो अभी अरु भी करूँगा हूँ लेकिन मारो मन असो कर रोज कि अपन एक और लोग की सुना तो अपन सुना इंदर सिंह मंडलोई का जिन्हें राम लखन द्वी का बारे में कितने अच्छे वर्णन करे तो सुना जो लोग गीत न लेवान आनंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो से की पूजा ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। हुस्न की पहचान सिर्फ गहनों से नहीं होती, सादगी में भी एक अलग ही चमक होती है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी मासूमियत ही उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। खूबसूरती जब सादगी का दामन थाम ले तो ये और भी निखर जाती है।

नज़र जब किसी खास पर ठहर जाती है तो हर महफिल हसीन और शाम सुहानी लगती है। दिल के आईने में बस एक ही तस्वीर रहती है और फिर दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ फीकी लगती है।

जब प्रेम का रोग लग जाता है तो प्रेमी को सारी दुनिया में उसकी प्रेमिका ही दिखती है और बड़े प्यार से कहता है, क्या खूब लगती हो। प्रेमिका भी इतराकर कहती है, फिर से कहो, सुना नहीं। प्रेमी जब तारीफ करता है तो प्रेमिका आँखों में हजारों फूल लिए, आँखों की चमक में भरे अपने प्रेमी की तरफ देखती है, चेहरे पे मुस्कान होती है, सागर की लहरों की तरह मन में हिलोर उठती है। शर्माकर कहती है, कितनी तारीफ करोगे। प्रेमी का प्यार भरा जवाब होता है, सांस रहेगी तब तक, चांद सितारे होंगे जब तक, तुम बेहद खूबसूरत हो, हर जीवन में तुम मेरी ही बनना, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।

प्रेम की अपनी भाषा होती है, ये बस प्रेमी ही समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रेम की एक ही बोली होती है और वो एक जैसी होती है। लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, इन सब ने एक ही भाषा समझी, वो है प्यार की। जो रूह से रूह को समझ जाता है, वो बिना बंधन भी एक दूसरे से बन जाता है। इस जग में सब झूठा, केवल प्रेम ही निस्वार्थ है। तपती धूप में ठंडी हवा है प्रेम, नदिया का सागर है प्रेम, काली घटा छाए तो बूंदों की मनुहार है प्रेम। मिली है जन्नत उसी को जिसने समझा है प्रेम को।

तख्तोताज टुकरा दिए जाते हैं मोहब्बत के लिए। मोहब्बत का ये कमाल है कि सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर चलना जिंदगी की नियति है तो मोहब्बत आधार है। सोचो, अगर दुनिया में मोहब्बत ना हो तो क्या होगा? क्या चांद अच्छा लगेगा? क्या नज़ारे खूबसूरत लगेंगे? ना रंग रहेंगे, ना रिश्ते रहेंगे, ना वादे रहेंगे, ना शिकायतें रहेंगी। इन सब का आधार सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। ना धन से, ना दौलत से दुनिया चलती है, सिर्फ मोहब्बत से।

पैगाम लिया है कभी, पैगाम दिया है, आँखों ने मोहब्बत में बड़ा काम किया है। न जाने क्या कशिश है उनकी मदहोश आँखों में, नज़र उनसे हटती ही नहीं। आँखों की लबों से जंग भी क्या खूब होती है, लब जो कहते हैं चले जाओ तो आँखें रोक लेती है। आँखें बयां करती है दिल का हाल, न जाने क्या होता है जब सामने हो तुम। भूल जाते हैं सब, बस दिखता है तो आँखों में प्यार। बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहने की तमन्ना दिल में रखते हैं, मोहब्बत में जुबा बंद हो जाती है, आँखें बात करती है।

पत्थर तराश के मैं मूरत नहीं बनाऊंगा, पूजा करूंगा उसकी, गीत उसी के गाऊंगा। ये मूरत मेरे मन की है, ये सूरत मेरे दिल की है। तराशा है क्या अब ये दिखलाऊंगा, पूजा करूंगा उसकी, गीत उसी के गाऊंगा। पत्थर जो मैंने देखा, जाने क्यों दिल मेरा धड़का, सोचा सीने से लगा लूं, ये भी पिघल जाएगा। फिर दूंगा आकार जो मेरे दिल को भाएगा, तराशूंगा कुछ इस तरह से, करिश्मा खुदा का हो जाएगा। देखने वाला देखता ही रह जाएगा, रूप की चांदी होगी, प्यार का सोना होगा, रंग वफा के भरूंगा, और करता हूँ वादा, प्यार कभी ना दूजा करूँगा।

एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और हसरत हमारी उस चांद को पाने की। जब दो दिल प्यार में होते हैं तो सारी रात आँखों में निकल जाती है, मस्ती भरी हवाएं चलती हैं, कली कली खिल जाती है, दिल कहता है बस उसी का हो ले, जिसके लिए कट रही है रातें आँखों में। तारे भी संग जग रहे हैं हमारे, क्योंकि चांद भी खोया है उसके ख्यालों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अगला कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस

0: जिनारी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने का प्रयास है। आकाशवाणी समाचार के लिए नीस फ्रांस से शैलेश मेनन जी की रिपोर्ट के साथ तकलैन अख्तर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए

0: विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। उनका ये बयान भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर हमलों का कड़ा विरोध करने के बाद आया है। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपेई की चेन सू यू को हराया। सेमीफाइनल में उनका सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। 10वां आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच रात 11 बजे से इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल पूर्वोत्तर क्षेत्र, बिहार, केरल, माहे, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में तेज वर्षा की आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा झारखंड में और आगे बढ़ गया है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना है। अगले 2 दिनों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines.

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम
1: चित्रगीत।
0: चित्रगीत में आइए आपको सुनवाते हैं जुर्म फिल्म का गीत। स्वर है कुमार शानू और साधना सरगम के, बोल हैं इंदिवर के।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म प्रेम रोग से। स्वर हैं सुरेश वाटकर के, बोल हैं संतोष आनंद के और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम के कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो से की पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर धड़कन फिल्म का गीत। स्वर हैं अलका याग्निक, उदित नारायण और कुमार शानू के। धुन है नदीम श्रवण की, बोल हैं समीर के। और इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली ने। कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया से लिख भेजा है हमें ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय ने। निवेदा, गाजीपुर से ही सुनना चाहते हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल। शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय। डोंगरगांव जिला राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय। बलीगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं रोशन देवागन, कौशल्या, हेमलता और डिंपल। धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर, अयान, फैजान, सुमेरा, साइमा, हसनैन और खुशी। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

बिता फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और शाबिर कुमार के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन है राहुल देव बर्मन की। और इस गीत की फरमाइश की है हमें नावदा खेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय, पवन सिंह, माही, सार्थक, आदित्य जाट एवं समस्त जाट परिवार ने। सुदामा नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं इसी गीत को अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता और चित्रा भंडारे। सुदामा नगर से ही सुनना चाहते हैं घनश्याम सिंह, मधु ठाकुर, सपना चौहान, ग्रंथ और शुभम सिंह। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर। बुरा मालेगांव दत्ता घायल, सुनीता बाई, सानिका और गजानन घायल। इसी गीत की फरमाइश की है हमें समाजवादी इंद्रनगर इंदौर से राजवीर, अभिराज, सुनील, ममता, रघुनाथ सिंह, सुशीला पंवार, विनीता, सतीश परिहार, अविका, पीहू और सृष्टि ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

हीरा पन्ना, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी के, धुन है आरडी बर्मन की, और इस गीत की फरमाइश की है हमें सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा, सालिया, शोएब खान, पोतरा मुस्तबा खान, रऊफ भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। मोटक्का माफी जिला खंडवा से सुनना चाहते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य और मन पटेल। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से सुनना चाहा है जगमाल सिंह डागला ने, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। पुणे से पंकज वाड़ोदे, प्रियंका बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। तो आइए सुनते हैं।

राजा हिंदुस्तानी इस फिल्म का गीत सुनिए अलका याग्निक के स्वर में। धुन है नदीम शबीन के और बोल हैं समीर के। इस गीत की फरमाइश की है हमें ओम साई राम रेडियो श्रोता संघ झुमरी तलैया से देव इंगोले, छकुली इंगोले, आरडी इंगोले, घंटाघर चौक खंडवा से सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। श्री रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से पेंटर रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिंकू, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और गौतम इंगोले। अशोक नगर बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से ही सुनना चाहते हैं पार्वती सकाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित, सोनू और मोनू ठोके। श्री माटकेश्वर श्रोता संघ से सुनना चाहते हैं नागेश्वर माटेगांव से शेषराव बोबड़े, सोनाजी, सीताराम वैष्णवी, स्वर्णा, वेणुताई, शुभम, माधवराव, देवराव, धर्माजी, संदीप और नावकीकर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से सुनना चाहते हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। किशनपुर से सुनना चाहा है आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज ने।

गंगा जमुना सरस्वती, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में। धुन है अनु मलिक की और बोल हैं इंदिवर के। इस गीत की फरमाइश की है हमें सनावत से हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया ने। दयापुर बाबली महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं इसी गीत को गजानन येले, नवदीप येले, शेरी वर्नेर अकोला से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जेतक और मिका बिरक, सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सुभाष और सदानंद, मुखर्जी नगर इंदौर से लिख भेजा है हमें इस गीती की फरमाइश जगदीश चौहान पेंटर, ललिता, अनु, विशाल, उर्वशी, कुमारी प्रियंका, प्रियांशी, ऋतिक, लक्की, शौर्य, मुकु, बसंतीबाई, किशनलाल, महेंद्र और मालती चौहान ने। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान, उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

लव स्टोरी, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार के स्वर में। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से सुनना चाहते हैं राजेश कुमार धनंजय, राहुल विशाल शीला और गायत्री धनंजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा और नीतू वैद, प्रमिलागंज आलोर जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा, शिवमपुरम कॉलोनी खंडवा से सुनना चाहते हैं विजय महोबिया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा, आदर्श नगर मलोट से सुनना चाहते हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से सुनना चाहते हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन नाहर, दिलीप सिंह पंवार, दिशा और कुश। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर के स्वर में। रचना और संगीत है रविंद्र जैन का और इस गीत की फरमाइश की है हमें नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। गांव भड़पूंजी जिला आगर से लिख भेजा है हमें रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, दुर्गा, श्याम बाबू, भावना, आयुष, उमंग और ओम प्रकाश ने। छबड़ा राजस्थान से सुनना चाहते हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। तालुका नेवासा कुपट्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, पोपलघट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवीदास और हरिभाव बिड़वे। सादूल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। छत्तीसगढ़ सिग्मा से सुनना चाहते हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, मीनू देवी, प्रकाश उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदनी, निखिल और गोरांज पंचोली। कोली मोहल्ला छबड़ा से ही सुनना चाहते हैं नूर बानो, सलमा बानो और बेबी रुखसार। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए, फिल्म फकीरा से। स्वर हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, रचना और संगीत है रविंद्र जैन का, और फरमाइश की है हमें छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार दीपक और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। गौरीनगर इंदौर से सुनना चाहा है आनंद कुमार कामले, रेखा राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं नंदानगर इंदौर से अभिषेक चौहान, मनीष यादव, अंशु यादव, हितेंद्र पाटिल, अभिजीत चौहान, माइकल, सतीश, शिवम और समस्त उनके साथी। उषानगर इंदौर से संदीप मित्तल, सोनू, आर्यन, अक्षरा, आना और समस्त मित्तल परिवार। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। यादव मोहल्ला सनावत से सुनना चाहते हैं दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकर। सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान, शकीला बानो, रुखसार और मोहम्मद आरिश। नांदखेड़ा जिला वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश, रुपेश, लीलाबाई, चेताली, प्रीति, वांदने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में श्रोताओं आइए सुनते हैं पंडित वी जी जोग का वायलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण।

अभी आप सुन रहे थे पंडित वीजी जोग का वायलिन पर बजाया राग श्याम कल्याण। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
1: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120

0: स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉ APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में यह जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। PV सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Juliet Arakel. Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
3: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken Snake Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
2: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapon System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realizing the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and lodged a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat Innovate Summit in Nice, France on Sunday, the spotlight is on India's remarkable startup journey over the past 12 years. From around 350 recognized startups in 2014, India has emerged as the world's third largest startup ecosystem with over 2,35,000 DPIIT recognized startups and 131 unicorns. The 19th Mumbai International Film Festival, MIFF 2026, a week-long celebration of documentary, short fiction and animation cinema, is all set up to begin on Monday. Addressing a curtain raiser press conference in Mumbai today, Managing Director of National Film Development Corporation, NFDC, Mr. Prakash Mattum, informed that the competition section will feature 144 films, including 52 international and 92 national entries. In badminton, PV Sindhu has stormed into the women's singles semi-final of the Australian Open tournament in Sydney. The third-seeded Indian outclassed Chinese Taipei's Chen Suyu in a one-sided quarter-final clash today. Sindhu will face top seed Akane Yamaguchi of Japan in the semi-final tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज की हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:51 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। अब आज्ञा दीजिए। जय हिंद।